0: Shocking news coming in this morning. Yet another deadly fire that we're reporting on this time. This is from Bihar and a hospital there in Muzaffarpur in Bihar. A plume of smoke in the hospital ICU was seen. Three people, viewers, have died. Over 20 people have been rescued. Many suffered burns. Fire broke out in early hours of the day. Hospital staff allegedly fled during the fire. Officials say fire broke out at 3 a.m. Search and rescue operations are underway as we speak. And starting this edition this morning with this tragic story developing in Muzaffarpur in Bihar, where there's been a fire at a hospital.
1: मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी और इसमें एक दर्जन से अधिक लोगों की मौत की सूचना है। अग्निशमन पदाधिकारी ने बताया कि 20 से 25 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मरीज के परिजन बता रहे हैं कि शव को गायब कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन के तमाम लोग यहां से फरार हो गए हैं। अब अस्पताल देखते हैं। अग्निशमन फायर ब्रिगेड की तमाम एक दर्जन से अधिक गाड़ियां आई हुई हैं जो रेस्क्यू कर रही हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग जुटे हुए हैं, रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। प्रशासन की टीम लगी हुई है और मरीज के परिजन जो हैं काफ़ी परेशान हैं। यही वो प्रसाद हॉस्पिटल है जिसमें अगले सुबह 3 बजे करीब आईसीयू में आग लग गई है और आग लगने के बाद उसमें भर्ती तमाम मरीजों की मौत हो गई है। अग्निशमन के तमाम टीम 100 से अधिक अग्निशमन के स्टाफ लगे हुए हैं और आग का जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन की टीम लगी हुई है। मरीज के परिजन काफी परेशान हैं और अगले सुबह की घटना है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 100 से 150 मीटर की दूरी पर यह अस्पताल है। आप देखते हैं अस्पताल में अफरा तफरी मचा हुआ है।
2: कौन को देखने आए हैं?
1: बहन को देखने आए।
2: हमारी बहन भर्ती थी इसमें।
1: अच्छा,
2: एक्सपायर कर गई।
1: हाँ, सौ वगैरह मिला।
2: हाँ, मैडम, हमारे बहनों जी हैं यहाँ पर, फोन किए थे। हाँ,
1: कौन भर्ती थे आपसे?
3: ससुर जी थे। उस दिन धक्का लागल था, अथी बागी में धक्का लगा था। उसको से जाए मनियारी थाना में रिपोर्ट मांगा तो मांगे तो रिपोर्ट नहीं दिया हमको। जब फोटो खींच के वहाँ पेश करेंगे कागज के, कुछ हमको मिलेगा देगा दवा भी। आज आग लग गया 3 बजे में,
4: 4 बजे
3: के लगभग में लगा है आग।
1: कब सूचना मिली, क्या स्थिति?
5: 3:55 में हम लोग को सूचना मिला तो एक बड़ी गाड़ी एक छोटी गाड़ी पारापारी हम लोगों को रिक्शा से 8 गाड़ी आई। यहाँ आए तो जैसे आईसीयू में जो पंचवा तालाब आईसीयू है उसमें हम लोग पहुँचे। वहाँ पर बताया गया कि पंचवा तालाब आग लगी हुई है तो उसमें आग नहीं था, आग माने ना के बराबर था, लेकिन बहुत से स्मोक धुआं हो गया था।
1: तो आग का कारण क्या लग रहा है?
5: शॉर्ट सर्किट हुआ है, वहीं बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ है।
1: अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं या भाग गए?
5: अभी कोई नहीं, अस्पताल प्रबंधन कोई सर नहीं मिल रहा है या ना कोई एक्यूरेट बताया जा रहा है।
0: हॉस्पिटल आईसीयू व्यूवर्स एंड मोस्ट पेशेंट्स वुडंट बी एबल टू इवन गेट अप फ्रॉम बेड बिकॉज दिस वाज द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड दैट्स व्हाट परहैप्स एक्सप्लेन्स द 3 deaths हियर। रोहित हैज गॉट मोर डिटेल्स दिस मॉर्निंग। रोहित, वी वेकिंग अप टू दिस ट्रेजिक स्टोरी ऑफ दिस होरिफिक फायर इन अ हॉस्पिटल। टेल अस, how is the situation as of now? What really happened here?
6: Situation right now continues to remain grim because this incident of fire had taken place at Prasad Hospital, one of the reputed hospitals in Muzaffarpur district of Bihar. And early 4 o'clock at around this incident took place, and basically, it's the ICU ward where the fire incident happened. And soon after that, the entire ward was filled with smoke. And later on, the fire team, the fire brigade team also rushed to the spot. And they managed to retrieve and take out a lot of patients who were already in the ICU ward. And the situation was also critical. So at least if 10 to 15 patients who were critical and who were in the ICU ward, they were taken out. And what now the district magistrate of Muzaffarpur has also confirmed that at least 3 patients have lost their life in this tragic incident that has taken place in the hospital. But what is also being learned is that the fact that when the fire team reached the spot, and no one from the hospital was present there. In fact, all the maybe the doctors, the nurses, or the other employees of the hospital, they all had fled from the scene, and that is why the fire team also had to really do a lot of work to find out where in fact the fire had taken place, and to know how to go to that area where the fire has taken place.

0: doing what it can to attract global capital, offset economic impact of the Iran conflict, and revive investor sentiments. Getting in details on what the government really intends to do as far as revival of the investor sentiment here is concerned, big foreign investment push by the central government. It's now moving to attract global capital, offset economic impact of the West Asia conflict. So I'm going to go straight across to Himanshu, getting in more details on that story. Is pure ordinance ke baare mein hamein batai, government is samay kya karna cha rahi hai foreign sentiment ko boost karne ke liye, Himanshu?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो इस कैबिनेट की बैठक के अंदर जो है एक बड़ा फैसला हुआ, जिसमें जो है अध्यादेश सरकार लेके आएगी फॉरेन फंडिंग को बढ़ाने के लिए, जो कि है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको बढ़ाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें हैं। और पूरी तरीके से कैपिटल गेन टैक्स को जो है वो खत्म कर दिया गया है, यानी कि अभी तक जो होता था, अगर आप कोई शेयर ले रहे हैं 12 महीने से अधिक समय तक उसको बॉन्ड को या लिस्टेड शेयर को अपने पास रखते थे तो 12.5% का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है टैक्स देना होता था। इसके अलावा उन्हें जो भी शेयर होल्डर होते थे उनको सरकारी बॉन्ड, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है, उनसे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था उसका 20% जो है विद होल्डिंग टैक्स भी चुकाना पड़ता था। ये सारी चीजें जो है सरकार ने अब खत्म की है, और इस पर 5% की जो रियायत दर है वो सरकार ने 2023 में समाप्त कर दिया था। इस वर्ष जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 2.5 लाख करोड़ का है, इसको और बढ़ाने के लिए सरकार जो है आगे स्टेप उठाएगी। और ये जो फॉरेन फंडिंग को लेकर जो है अध्यादेश, इसको अपकमिंग जो मानसून सेशन है उसमें सरकार लेकर आएगी प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद।
0: Himanshu, getting in those details at this point in time, telling us about big foreign investment push by the center here. I'm now going straight across to my colleague Sakshi Batra of Business Today Television with all the updates of the markets in this business show. Over to you, Sakshi.
2: Look, this investment guru's tips will double your money. Just claim the offer.
3: Double your money from any random group. Attention. Promising double returns, they'll lure you in tight. Unverified groups will send fake tips overnight, emptying your pockets before you can fight. SEBI and NSE advise, consult only SEBI registered advisors and make payments only to verified accounts or UPI IDs. An investor awareness initiative by SEBI and NSE.
4: Presented by National Stock Exchange.

0: Another tragic story that we're getting from our viewers that this has got to do with the NEET fallout. A NEET aspirant has died, is what we are learning. An aspirant from Madhya Pradesh's Mauganj district has died by suicide after she was, in fact, she gave up. She didn't want to go back to giving the exams once again. That's what she's reportedly said. After the cancellation of the medical entrance examination, she said she's not got the strength to do this anymore. She's left behind a note saying that she didn't have the courage to appear. I'm going to go straight across to Ravish, getting in more details in that story. Ravish, ye victim, un lakho students mein se hai jin logon ne appear kiya tha NEET exam ke liye. Bahut hi kathin hai undergraduate exams aur haar gaye ek tarike se jabki cancellation ho gaya. क्या बता रहे हैं परिवार वाले? बहुत ही अपसेटिंग न्यूज आप हमें ये मॉर्निंग दे रहे हैं. परिवार वालों का ये भी कहना है कि अच्छा करना चाह रही थी और उन्हें ऐसे लग रहा था कि बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम में परफॉर्म किया है.
1: बिल्कुल स्नेहा, आपको बताएं कि जो आकांक्षा थी उसने अपने फैमिली को ये बताया था कि उसका पेपर बड़ा अच्छा गया है और उसको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि उसके जो मार्क्स हैं वो अराउंड 650 प्लस जाने वाले हैं और उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी इस बात की एक्सपेक्टेशन थी कि अगर इतने अच्छे नंबर्स आएंगे तो उसे कोई अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा. और जब पेपर लीक की खबर आई, उसके बाद नीट एग्जाम कैंसिल हुई, तो वो स्ट्रेस में चली गई थी उस दिन से ही जब से ये खबर आई थी. और वो बार बार अपनी फैमिली से कहती थी कि उसने बड़ी मेहनत की थी और उसने अच्छा पेपर दिया था और दोबारा पेपर देने की हिम्मत अब उसकी नहीं है. उसके मन में ये डर घर कर गया था कि अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो बहुत टफ आ सकता है और यही बार बार वो अपनी फैमिली को बताती भी थी. और जो सुसाइड नोट पुलिस ने रिकवर किया है उसमें भी उसने इसी बात को मेंशन किया है कि दोबारा एग्जाम देने की ताकत अब उसमें नहीं है. उसका पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन अब वो इतनी मेहनत दोबारा करके पढ़ाई करने के बाद इतना टफ पेपर नहीं दे सकती है जो उसको लग रहा था कि टफ आएगा. तो इसी बात से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी. जिस दिन पेपर लीक हुआ तब से ही, हालांकि घर वाले लगातार उसको समझा रहे थे कि पेपर एक होता है, खत्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कल जब उसे मौका मिला, जब वो घर में अकेली थी, तो उसने ये घातक कदम उठा लिया. और बाद में इस पूरे मामले में आपको बता दें कि NSUI क्या कि रिप्रेजेंटेटिव दल जो है वो बकायदा उससे मिले था. NSUI के रिप्रेजेंटेटिव उससे मिले और अराउंड 2.5 लाख की एक इमीडिएट हेल्प जो है, फाइनेंशियल हेल्प, वो उसकी फैमिली की NSUI की तरफ से मध्य प्रदेश में कल की गई है. लेकिन इसने एक बार फिर से बता दिया है कि अगर सिर्फ पेपर लीक जो है वो एक मुद्दा नहीं है, इस पेपर लीक ने कैसे इन लाखों स्टूडेंट्स के मन में एक अनजाना सा डर भर दिया है उनके कैरियर को लेकर के और पिछले 2-3 सालों से जो वो पढ़ाई कर रहे थे उसको लेकर के, तो उसके रिजल्ट अब धीरे धीरे आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से खतरनाक भी दिख रहे हैं पूरे देश में इस समय.
0: Bilkul, Ravish, with those details. Now, the victim's family had said that they had made many financial sacrifices as well. The suicide note of the young victim on your screens at this point in time, where she has spoken about the fact that she didn't want to appear for NEET exams again. Dobara NEET dene ki himmat nahi hai, is what she wrote in that letter. This is really upsetting. Ravish, you know, students prepare for months and years together for these exams. परिवार वाले जो हैं वो कई सारे sacrifices करते हैं. यहाँ बताया जा रहा है कि परिवार वालों ने एक लोन भी लिया था 3 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोचिंग के लिए नागपुर में, लेकिन ये सब जो एफर्ट्स है वो वेस्ट गया एक तरीके से. बच्चे ने अपनी जान खो दी. ये भी कहा है कि सुसाइड नोट में वो अपोलोजाइज कर रही है अपने फैमिली की तरफ, ये कह रही है सॉरी मम्मी पापा मैंने सब बर्बाद कर दिया. अपने आप को एक तरीके से दोषी ठहरा रही है.
1: बिल्कुल, क्योंकि जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है, स्नेहा आपको बता दें कि बड़ा रिमोट एरिया है वो, मऊगंज जो है एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, और वहाँ से ये आकांक्षा जो है बाहर निकल के एक अच्छा कैरियर चूज करना चाहती थी. एक छोटे से परिवार की, एक छोटे से घर की लड़की थी, किसान फैमिली थी, और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटी को नीट की प्रिपरेशन करवा सके भोपाल इंदौर जैसे बड़े सेंटर में. तो उसकी फैमिली ने उनके पास जो करीब 3 एकड़ लैंड था एग्रीकल्चर लैंड, उसे बेचा. उसके बाद उसके बेसिस पे उन्होंने एक लोन लिया और लोन लेकर के फिर अपनी बेटी को पढ़ाया था। तो पिछले दो साल से वो नीट के प्रिपरेशन कर रही थी और जब नीट का एग्जाम गया तो वो बहुत खुश थी। उसके फैमिली मेंबर से हमने कल जब बात की तो उन्होंने बताया कि वो बहुत खुश थी जब एग्जाम देके वापस आई और उसने कहा कि अब मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे यहाँ जाना है, दोस्तों से मिलना है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती थी क्योंकि उसे पता था कि उसका पेपर बहुत अच्छा गया है और वो पूरी तरीके से एक तरीके से ये अश्योर्ड थी कि उसे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है जो उसके एग्जाम गया है उसके आधार पे। और सडनली जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई और पेपर लीक के बाद कैंसिलेशन होता है और रीनीट की बात उठती है तब वो टूट जाती है। और उस वक्त फिर ये सोचने लगती है आकांक्षा कि उसकी फैमिली ने उसके लिए कितना कुछ किया था लेकिन अब उसकी कीमत जो है उसे फिर से चुकानी पड़ेगी। और उसे ये डर था कि क्या दोबारा रीनीट के लिए जब उसे प्रिपरेशन करने बाहर जाना पड़ेगा तो फिर से फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं आ जाएगा फैमिली के ऊपर। तो ऐसे कई सारे सवाल उसके मन में आ रहे थे और इसमें से कुछ चीज़ें उसने फैमिली के साथ डिस्कस भी की थी पहले, लेकिन फैमिली को नहीं पता था कि ये बातें उसके मन में इस कदर तक बैठ चुकी हैं कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। और इसी बात को लेकर के बार बार फैमिली मेम्बर्स भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनल है कि अगर उन्हें पता होता कि इस हद तक नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद उनकी बेटी टूट चुकी है तो उसे वो अकेला ही नहीं छोड़ते कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले।
0: Ravish getting in those details at this point in time telling us about that horrific case that is being reported from the state of Madhya Pradesh where a young girl has died by suicide. She says in her suicide note and it's on our screens at this point in time which really should wake up the administration to their failures because cancellation of NEET exams is not just a procedural matter. Lives matter at the end of the day. The effort of the girl, the aspirant here, the family members, the kind of financial losses that they have suffered. The girl took her life. Most worryingly, it's a young girl who's killed herself saying that she doesn't have the courage anymore to in fact appear for the exams. Once again, she'd gone back and told her parents the first time round that she's done well and was hopeful of becoming a doctor. More news coming in from Kerala here. A Kerala Islamist gym idea has sparked a big controversy. The gym owner pushed shocking gender segregation. No music, separate hours for men and women is what he said. Also justifying his idea, the promoter for this Shariat-compliant gym has spoken out. Controversial Islamic gym fitness model, a faith-friendly gym, a medieval mindset. Regressive push for hijab in gym for women. No men and women together policy. An announcement made by a fitness center in Palakkad on an Islamic-friendly gym. Well, the gym made an announcement in which the owner, Nawaz Muthu, said that the new model will not have loud music and gender-segregated workout hours to ensure men and women don't get an opportunity to exercise together. Listen in to what the trainer said.
2: ഇസ്ലാമിക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ജിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും, സ്ത്രീകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലേഡീസ് ട്രെയിനർ ആയിരിക്കും, ഒക്കെ ജെന്റ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ടൈം. പിന്നെ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവില്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജിമ്മാണ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ജിമ്മാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പലതും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ജിമ്മായിട്ടൊന്നും ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുസ്ലിം ജിമ്മൊന്നും ഞാൻ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇസ്ലാമിക് ഫ്രണ്ട്ലി ജിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ മ്യൂസിക് കേൾക്കില്ല, സ്ത്രീകളുള്ള ജിമ്മിലേക്ക് കേട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോകാനൊരു ജിമ്മില്ല.
0: I'm going straight across now to Rahul Ishwar for his perspective on what's going on in the state of Kerala as far as Palakkad is concerned. This particular gym, Rahul Ishwar, talks about an Islamic fitness model. Men and women can't work out together. Hijab in the gym, no music. What do you think this is all about?
3: I'm a Hindu activist. I'm a Gandhi and I work for Hindu-Muslim unity. But I fail to understand what is an Islamic-friendly gym. There is nothing called Islamic-friendly gym or Hindu-friendly gym or Christian-friendly gym. There is only something called health-friendly gym. I can understand if there are some conservative people who are against mixing, but branding it Islamic-friendly gym is not good in a nation like a secular and pluralistic nation like India. You know, it can create doubt, suspicion, and can offend other people too. yes, there may be some people who are against mixing. Those kind of people from every community. We may not agree or may agree with them, but this is the point. But, you know, branding it Islamic-friendly gym, Sharia-compliant gym, these things can unnecessarily create rift in the community, and I would humbly urge those organizers to rethink about their branding strategy. Their marketing and branding should not create fissures in social fabric, and it should not alienate any other section of society. Health-friendly gym is what we need, not religion-friendly gym.
0: All right, I'm going to thank you for joining in. A health-friendly gym is what we need. And what's religion got to do with health is a big question here. I'm going to thank you, Rahul Ishwar, for sharing your views with us. Why should this be promoted as a religious, a gym which looks at or keeps in mind the religious sentiments as well? Shibi is with us. Shibi, you were telling us earlier that until the time there is some sort of a complaint against it, this particular gym, there can be nothing done. The owner here is also clarified, saying that he's only trying to get more men and women to work out. And if it is as per the religious beliefs, what's wrong in a way of justification? That's what he says.
4: Exactly. That's the justification he gives. He says that, you know, there are few women who abide by the Islamic law, and they're finding it a bit difficult to come and work out with in a mixed setup is what he says. So there were many people who reached out to him. That's why he came up with this solution of having different timings and different trainers for both male and female. And also there won't be loud music. We have seen this situation where, you know, there are different timing workouts for women and men in few gyms also. Online training also takes place separately for women and men at many locations. But the fact that there won't be any loud music is where the question really arises. And he says particularly that this is an Islamic-friendly gym. The branding is really, raising questions. And that's why he had to delete the first video in which a lot of people raised questions, including from the Muslim community, raised questions to him in the first video. That's when he didn't give a clarification on what will be included in the first video. He just said it's going to be an Islamic-friendly gym. Later, he deleted it and posted another video saying that what I mean by it is that many people reached out to me to prepare an alternate setup, and that's why I came up with this. It's open to anybody from any religion. It will work as usual. It's just that it will be separate timings and separate trainers, and also there won't be loud music, strictly abiding by the law. So that's where now the question again arises as to whether we should be promoting such regressive mentality in today's generation and today's time. So the authorities have not yet initiated any action because as of now there's no complaint. And also if the complaint is received also, they will have to look into the legality of it, like whether there's anything illegal involved in making a gym setup like that.
0: Absolutely. I wonder if there, Shariat compliant gyms even outside of India and Islamic countries is what I'm really wondering, Shibi. Be with us. Coming back to you, listening to what the gym owner said and how he justified all of this.
2: ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ജിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരുമിച്ച് കോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും, സ്ത്രീകൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലേഡീസ് ട്രെയിനർ ആയിരിക്കും, ജെന്റ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും. പിന്നെ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവില്ല, ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജിമ്മാണ്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ജിമ്മാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. കുത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് പലതും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സംഭവം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ജിമ്മായിട്ടൊന്നും ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മുസ്ലിം ജിമ്മെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇസ്ലാമിക് ഫ്രണ്ട്ലി ജിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് മ്യൂസിക് കേൾക്കില്ല, സ്ത്രീകളുള്ള ജിമ്മിലേക്ക് കേട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് പോകാൻ ഒരു ജിമ്മില്ല. ഞാൻ ജിമ്മിടാൻ പോകുന്ന ലോക്കാലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലുണ്ട്. അവര് അത് കാരണം മാത്രമായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോകാതെ ഇരിക്കുന്ന എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, സഹോദരങ്ങൾ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ജിമ്മാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ
0: विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ बातचीत करने के लिए. पूछना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? यहां बताया जा रहा है कि शरीयत कंप्लायंट जिम होगा, यहां पर जो औरतें हैं वो अलग टाइम पर वर्कआउट करेंगी, आदमियों के साथ नहीं कर सकती है, हिजाब होगा और म्यूजिक नहीं जो है प्ले किया जाएगा, ये सब इस्लाम के अगेंस्ट है. आप कैसे देखते हैं इसे?
5: देखिए, अभी जिस तरह से कांग्रेस ने उन इस्लामिक जिहादियों के सामने सरेंडर करके और जो कम्युनल पार्टी के साथ सरकार बनाई है, तो उसके ये परिणाम सामने आ रहे हैं. ये चाह रहे हैं कि ये देश जो है ना, वो राज्य जो है वो संविधान से नहीं बल्कि शरीयत से चलेगा. ये शरीयत की जो मानसिकता है वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस्लाम के अनुसार चलना चाहते हैं तो इस्लाम में तो मुस्लिम औरतों को बाहर निकलने या अलाउड नहीं है, जिम में कैसे बुला रहे हो भाई? दूसरी बात, हिजाब क्या कहूँ, तो क्या बुरके में भी फिर जिम कराओगे क्या? तीसरी बात ये कि ये जो जो मानसिकता है उस मानसिकता के हिसाब से तो ये कभी वहां पर जिम के बाहर तो सिर्फ मुसलमान ही अलाउड है, इसमें हिंदुओं को फंसाने के अलग अलग तरह के हैं बेसिकली। इस्लामिक जिहादी मानसिकता है, ये कट्टरपंथी सोच है, इसे कम से कम निकलना चाहिए। ये जो जिम है वो यूथ के लिए होता है
0: जी,
5: यूथ को ये जो एक इंजेक्ट करके कट्टरपंथ को इंजेक्शन देने का एक केंद्र खोल रहे थे जिस पर विराम लगा है, और हमें लगता है कि इस तरह की मानसिकता पर भी विराम लगना चाहिए जो इस तरह की सोच को पनपाती है। आखिरकार ये सब चीजें भारत जैसे देश के अंदर कैसे हो सकती है भाई? आप किस तरह से, अब इस्लाम के अनुसार तो म्यूजिक भी अलाउड नहीं है, वो कह रहे धीमा म्यूजिक चलेगा। इस्लाम के अनुसार तो लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी लगाना अलाउड नहीं है। इस्लाम के अनुसार तो ये जो फतवा है दारुल देवबंद के फतवा देखोगे तो उसके हिसाब से तो महिलाएं दासी हैं। तो ये देश इनकी मानसिकता से नहीं चलेगा। भारत में महिलाएं अब वो फाइटर पायलट चला रही हैं। भारत की महिलाएं विश्व के अंदर वहां पर चंद्रमा पहुंच गई
0: जी,
5: और ये पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा इस मानसिकता कहाँ है
0: जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी विनोद बंसल, आजकल तो हम सोशल इंटीग्रेशन देख रहे हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम या औरत मर्द साथ में वर्कआउट ना करे, ये तो एक बहुत ही रिग्रेसिव और मिडिवल तरीके का सोच है।
5: देखिए बात वो भी नहीं है कि बात साथ करें कि नहीं करें, बट क्वेश्चन ये कि जो ओवरऑल मानसिकता है ना वो बहुत गंदी है, वो देश विरोधी मानसिकता मैं कहूंगा, जो जो भारत की संस्कृति है उसके विरुद्ध है। मेरे देश की नारियां तो आप देखिए कि वो युद्ध करने जाती थी, मेरे देश की नारियां तो वो हैं जो कि खुले में जो है वो अपना तलवार चलाती थी, ऐसा ही खड़े होती थी, और ये घर से बाहर निकलने देना चाहते हो, आप स्त्री से बाहर नहीं निकलना चाहते। ये स्त्रीपुर के अंदर लैंगिक संबंध जो अपना जो दूरियां हैं वो भेदभाव करना चाहते हैं बेसिकली, जबकि मेरे देश के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सेक्स रिलीजन, ऐसा कैसे कर सकते हो भैया
0: जी?
5: ये तो बेसिकली ये जो मानसिकता है ना ये इस बात का परिचय है कि जैसी सत्ता होती है वैसी मानसिकता समाज की बन जाती है
0: जी। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल दे, मोस्ट गुड वेलकम बृंदा अडिगे ऑन द शो एट दिस पॉइंट। बृंदा अडिगे, हाउ डू यू लुक एट दिस? यू नो ही सेइंग दैट the gym owner says that women should work out at different times as men, there won't be music, women should be using a hijab and all of that. It sounds like not just like social and gender segregation, but it also sounds like somebody who's trying to say, you know, that we are different from you, or we're different from the others, and this is how we are. This is some sort of an Islamic gym that is being promoted by the owner here.
6: This is absolutely unacceptable. Mm-hmm. This is not different. This is unconstitutional, atrocious. A gym is registered under a commercial law, and commercial laws have certain guidelines and rules, and he cannot go and talk about Sharia or Islamic rule and law because my constitution is supreme over here. This is not differentiation, this is discrimination, discriminating women irrespective of what he might think about women's clothing and training, gym and all of those kind of things. That has to be left up to the individuals. How dare he put up saying that this is a Sharia-friendly law? Certainly, this is not a Sharia-friendly country. So how can he keep that as a Sharia-friendly gym? Then he must take his gym. Sharia law. My country, only my constitution is supreme, and only those laws have to be followed. Anything else, I think he needs to be shut down by the authorities.
0: All right. I'm going to thank you, Bṛnda Adige, for your views on that. You're saying this is absolutely unconstitutional. It's not even religious. It's segregation of the worst kind, wherein you say that women can come in at a particular time, not the same as men. They should be wearing a hijab and they can not listen to music while working out. Discriminatory and unconstitutional is what our experts on the broadcast are now saying about this gym, that the idea of this gym that has been floated. Well, you can find that report and much more up on our website. That's indiatoday.in. You can download the app as well. News continues right here. Thank you for watching.

0: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
1: Jack, you're killing me.
0: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
2: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: the interrogation, he confessed that the building was in a highly dilapidated condition. Building owner Lovekish also confessed that the hotel operated 25 rooms against the 6 rooms that were allowed. Lovekish Bajaj will be presented before the court today. Cops intend to seek a remand of 3 to 4 days for the accused. But most importantly, the lapses that have come to light have really shocked one and all. This admission that was made by the owner, Lovekish Bajaj, where he himself, he said that they had never obtained a fire safety NOC for this building. The license for operation actually allowed only a capacity of 6 rooms, but they operated on 25 rooms. They ran the hotel single-handedly. They did not have any partners, and it was just on an ad hoc basis that they were running this hotel, despite knowing that it is in a dilapidated condition. And they entrusted the hotel operations to accountant Jay Mishra. That is exactly what Lovekish Bajaj has said, where he's pinned the blame on Jay Mishra as far as day-to-day functioning of that hotel was concerned. And we cut across to more breaking news coming in. This is on the mattress man, the brave heart who risked his life, Riaz Mansouri, who owned that particular mattress shop. And when he realized that the fire was getting out of control and some who were attempting to jump from that building, he quickly went ahead and he laid down mattresses from his shop onto that road to save lives, so that anybody who would try and jump out of that structure would not get a direct hit, the direct impact of jumping onto a hard surface, and probably that would save lives. His mattresses that really helped in saving those lives, the victims who jumped from the top floor, and his mattresses were the ones that provided cushion. The locals rushed in, and unfortunately 21 lives are lost, but 12 lives that were also saved because of timely action of these locals, because of timely action of the owner of the mattress shop. These are ordinary Delhiites, but they exhibited such extraordinary heroism and Delhi's humanity that stood tall amid the flames. Listen in.
1: जतिन मंसूरी साहब हैं, इनकी गद्दे की दुकान थी. इन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपने दुकान का सारा गद्दा बाहर निकाल दिया. इनसे जानने की कोशिश करते हैं. मंसूरी साहब, क्या मंजर था? आपने जो काम किया है वो बेहद तारीफ के लायक है.
2: मंजर भयानक था. लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. हमने सारे गद्दे निकाल के बाहर डाल दिए सड़क पे. उन पर कूदे लोग, 7 से 8 लोग कूदे उसमें. अच्छा. उनकी सबकी जान बच गई. और उसके बाद में बहुत तगड़ी आग लगी, फायर ब्रिगेड आ गई, उसने बुझाया. फिर कैजुअल्टी के लिए हमने अपना कपड़ा दिया, बेड शीटें दी, रजाइयाँ दी, चादरें दी, वो सब हमने जो भी था सारा दुकान का सामान दे दिया हमने उनको. हमने कोई समय नहीं देखा ये कौन है कौन नहीं है. हमने देखा ये हमारा भाई है, हमारा इंसानियत का फ़र्ज है इसकी मदद करना.
1: जो लोग कूद रहे थे उसमें महिला और बच्चे, पुरुष सभी थे उसमें?
2: हाँ, उसमें पुरुष भी जो कूदे हैं, 2 लेडीज़ हैं और 6 पुरुष हैं जो कूदी ऊपर से, 4थी और 5वीं तीसरी से.
1: अच्छा, तो आपको भी चोटें आई हैं जब आप लोगों को बचा?
2: हाँ, मेरे पैर में, घुटने में तकलीफ हो गई, झटका गया. और बच्चे के पैर में कहाँ से लगाए, मेरा बेटा अरमान.
1: अच्छा,
2: उनके पैर में कहाँ से?
1: सर, आपने जो काम किया है वो एक इंसानियत की मिसाल है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके दुकान का जो सामान है वो नुकसान हुआ है. उसका ऐसा इस्तेमाल हुआ है जिससे लोगों की जिंदगियाँ बची हैं.
2: हाँ, जिंदगियाँ बची हैं.
1: तो आपको अब कितने की लगभग की लागत की आपकी दुकान की सामान की दुकान
2: है? लगभग 1.5 से 2 लाख का नुकसान है जी मेरा.
1: हाँ जी,
3: होटल के सामने मेरी शॉप है, मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से.
1: मंसूरी भाई, कितनी पुरानी आपकी दुकान है?
3: लगभग 40 से 45.
1: आप सोचो, जो ये हादसा हुआ था और आपकी सूझबूझ से जो है कई लोगों की जानें बची, क्या मंजर था भाई साहब?
3: मंजर बहुत डरावना था, चीख पुकार थी, फ्लोर पे से सब चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प हेल्प. क्यों? बाहर कंट्री के लोग ज़्यादा. अच्छा. वो हिंदी जानते नहीं थे, इसलिए हेल्प हेल्प करके वो बहुत चिल्ला रहे. तो देखा तो हमने, तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से आवाज़ आ रही थी, मैट्रेसेस निकाले, कम से कम 20 से 22 मैट्रेसेस बाहर रोड पे बिछाए, जिन पे 7 से 8 बंदे कूदे, जिसमें 2-3 लेडीज हैं, बाकी आदमी हैं, 1 बच्चा है.
1: आपको भी चोट लगी है, मैं देख रहा हूँ.
3: कांच लगा है हाथ में, ये 2 कांच लगे हैं, 1 अंगूठे में, उंगली में कांच लगा है.
0: Let me go back to my colleague.

0: Singh, who continues to report on the story. Anshul, many questions are being asked. Did the fire tenders arrive on time? Did the cops arrive on time? Was help adequate enough? Why is it that all these violations were looked past? Who is responsible? Who is accountable? But in all of this, the way the locals stood up, the way they tried to help those in distress, the way they tried to save lives, and most importantly, the mattress owner of that shop who laid down those mattresses, 12 lives that were thankfully saved.
1: Well, definitely, it was the locals who acted as the good Samaritans and who made sure that they respond as the first responders. I'm being joined by a few of them at this point in time. Sir, aap log kal sabse pehle yahan par pahunche aur aap logon ne kai logon ki jaan bachayi. Kya hua pura manzar? Aur ek sawal jo kai log pooch rahe hain ki fire aur police ko aane mein samay laga, to kya is baat mein koi sachchai hai?
2: Nahi, ye bilkul galat hai. Bilkul galat hai. Agar fire team pe aur nahi aati to aag ye bujhti nahi. जो हमारी लोकल थाने की पुलिस है, तो SHO जो हमारे हैं विनय यादव साहब, वो सिविल ड्रेस में अपने ट्रैक सूट में हम मौका है वारदात पे पहुंच गए थे और वो वहीं खड़े रहे, लास्ट तक वहीं खड़े रहे. उन्होंने हमें अंदर जाने के लिए उन्होंने परमिशन दी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम विदाउट उसमें थे तो हमें जाने नहीं दिया जा रहा था कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है. तो हम लोगों को परमिशन मिली प्रशासन की तरफ से जब हम लोग बिना अपनी जान की परवाह के अंदर घुस गए. तो ये गलत है कि फायर ब्रिगेड
1: कितने लोगों को आपने यहाँ से निकाल पाया?
2: सर, जितने भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं या जो अपनी जान गंवा चुके हैं, हम सब लोगों ने, हमारी पूरी टीम है और फायर टीम और दिल्ली पुलिस ने पूरे सब लोगों को हमने ही रेस्क्यू किया था.
1: आप भी यहाँ पर थे, कितने लोग कूदे और आप लोग कितने लोगों को?
3: तकरीबन देखो, काउंटिंग हमने की नहीं थी, अराउंड 10 to 15 लोग. तो जब गद्दे लगाए हैं लोगों ने, हम उसके बाद पहुंचे हैं. लोगों ने पहले ही गद्दे लगा दिए थे, लोकल लोगों ने, तो 10-15 लोगों ने कूद के जान बचाई है. उसके बाद जब फायर ब्रिगेड ने आके आग बुझा दी है, हम सब लोग अंदर गए हैं. तो अंदर से जो अनकॉन्शियस लोग थे उनको लेके आए हैं और टोटल हमने अंदर से 40 to 45 लोगों का रेस्क्यू किया है. ठीक है, जो अंदर किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है उन सबको हम लोगों ने ही निकाला है. ठीक है, वसीम ने और एक इसरार भाई है, इन लोगों ने उन्हें CPR दिया है अंदर होटल के अंदर ही. फ्लोर
2: खुद एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ मैक्स हॉस्पिटल
3: में, फ्लोर पर ही
2: तो हमने देखा कि वहाँ पे जब लोग वेन चेक करी तो उनमें सांस थी, नब्ज चेक करी तो हमने CPR देना चालू करा. तो इसरार है, उसको तो CPR आता भी नहीं है. तो जैसा जैसा मैंने उसको बताया गया, मुंह से एयर देनी है. हमने पूरे जल चुके थे, जो भी इंजर्ड थे सीरियस थे, पूरा मुंह उनका जल चुका था, कहीं से यही पता नहीं चल पा रहा था. तो हमने बिना हाइजीन देखे माउथ टू माउथ उनको एयर दिया है, जिस वजह से कुछ पेशेंट रिकवर हुए हैं और जो नहीं हो पाए सर उनका बहुत दुख है.
3: सर,
2: सब लोगों को हमने निकाला है,
3: आधे जले थे, कुछ पूरे बंद हो गए थे,
2: अकड़ चुके थे,
3: पूरे बंद हो गए थे. एक लड़का था वो स्टेट्स पे, हाथ में उसके बैग था, वो वहीं पे जला हुआ था. एक लड़की थी, जब हमने उसको उठाया, एक आमिरा उसको जब उठाया तो
2: उसकी खाल
3: हाथ में आ गई,
2: ऐसे हाथ में आ गई.
3: तो आप ये पूछो कि हम अंदर क्या देखा, तो वो मंजर तो बताना.
2: हमें नींद नहीं आई है सर,
3: कल रात सोए नहीं है सर.
1: लेकिन बहुत बड़ा काम किया आप लोगों की सूझबूझ की वजह से, काफी लोगों की जान बच गई. पूरा देश आपको इसके लिए धन्यवाद देता है. थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस. सो एज यू हर्ड दैट दीज वर दी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स एंड थैंकफुली वन ऑफ देम वॉज एक्चुअली अ हेल्थ केयर वर्कर हु इनिशियली मेड श्योर दैट दी CPR दैट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू दी पीपल हु आर इंजर्ड and who are unconscious, that could be given on time, due to which many more lives were saved. If at all these people would have feared and would not have managed to enter inside the premises, or for that matter, would not have.
0: They are emerging as real heroes. I want to thank you, Anshul, for getting us those voices, because in the middle of the smoke, the flames, the chaos, it was ordinary locals who became the first responders in Delhi's deadly hotel fire. Residents, traders and labourers who rushed in even before emergency teams could fully take control. With thick smoke trapping guests inside the building, locals used whatever they could find. Ropes, mattresses, bed sheets and even bricks to break open through those windows to be able to rescue people. Some broke windows with their bare hands and bricks to create escape routes, while others threw ropes towards upper floors so that the trapped guests could somehow hold on to that rope and climb down. Mattresses were spread on the road below to the cushion and helping those who could jump and thankfully jumped to safety. Several locals who entered the burning building despite unbearable heat and choking smoke, carrying unconscious victims out one by one. Others administered CPR, shifted the injured to safer spots, helped transport survivors to hospitals. India Today spoke to Riyazuddin Mansouri, the man who provided mattresses from his shop and saved several lives.
4: आपको बुझाने के बाद हमने रेस्क्यू किया है फायर फाइटिंग के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर जिन लोगों को निकाला था मैंने पहले ही बताया था कि सब अनकॉन्शियस थे मोस्टली उनमें से जो एक्सपायर हो गए क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था लास्ट राउंड जब हमने लिया था फायर फाइटिंग टीम के साथ तो मैंने ही वो दरवाज़ा खोला लास्ट नीचे बहुत सुंदर ग्राउंड फ्लोर का तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे इवन जैसे फिल्मों में होता है एक दूसरे कंधे पर हाथ रखे वो कोर्ट पर बैठी हुई थी आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट बट आई एम नॉट कंफर्म और वो
5: डाल के
4: उसके बराबर
5: है 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है और भी सेफ लोगों को निकाला और कुछ लोग कैजुअलिटीज हैं
3: थर्ड फ्लोर से तीन नाइजीरियन चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए जिन्होंने अपनी जान बचाई थी तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा फायर की टीम आई है गेट शटर काटा है
6: ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का इस चैनल को काटा गया है क्या जानकारी मिल रही क्या ताला बंद था क्या
7: ये लॉक था वो फायर वाले आए थे उन्होंने कैंची दी थी उससे काटा है
6: जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों ताला क्यों लगा
7: ये इतना आइडिया नहीं है लेकिन ये बंद था फिर इनको चैनल से काटा उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया फिर अंदर घुसे
8: फायर फाइटिंग के पास
7: उससे काटा फिर हम अंदर घुसे
0: On to more breaking news coming in. Delhi Chief Minister Rekha Gupta, who is at the Max Hospital at the moment to meet with the injured victims. We are getting you those pictures of how the Delhi government has cracked down on hotels that are flouting norms left, right and center. In fact, 18 properties that have been identified already that have been violating norms. Ceiling dry by the Delhi government, that is now the top focus, especially in Malviya Nagar. But remember, it is not just Malviya Nagar, several other areas that continue to remain susceptible. 21 lives that were lost. But why is it that the Delhi government took this incident as a warning sign and waited until now to be able to act when it comes to such illegal encroachments, when it comes to how they need to corner on those structures that are violating norms left, right and center. Watch this report.
9: हमारी मौजूदगी मैक्स हॉस्पिटल में है और आपको तस्वीरें दिखा दें मैक्स हॉस्पिटल में इस वक्त पहुंची है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आप तस्वीरें देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीरें जो कि मैक्स हॉस्पिटल इस वक्त जो है वो पहुंची है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के और यहाँ पर जो मरीज है जो कि मालवीय नगर के अंदर हादसा हुआ था उस हादसे के बाद जो तमाम मरीज थे उनको मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो है एडमिट किया गया था उनकी देखने के लिए इस वक्त जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो पहुंची है मैक्स हॉस्पिटल
0: Let me cut across to Sushant Pehra, who's now joining us live on the broadcast. Sushant, do give us details of when Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the Max Hospital, how she gave assurances to those who are injured, the help that has been extended by the Delhi government to the families, and most importantly, the focus now for the Delhi government to ensure that they crack down on such structures that have been violating norms.
9: देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब से दो मिनट पहले ही मैक्स हॉस्पिटल जो है वो पहुंची हैं ये तस्वीरें मैक्स हॉस्पिटल की हैं जहां पर कल मालवीय नगर में जो हादसा हुआ उसमें जिन लोगों की जान गई जो लोग घायल थे उनसे मुलाकात करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पहुंची हैं कल जिस तरीके से ये हादसा हुआ था उसके बाद से ही लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से बैक टू बैक कई सारी मीटिंग जो है वो की गई दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से भी मीटिंग जो है वो की गई देर रात मुख्यमंत्री की तरफ से एक ज्वाइंट कमेटी का गठन जो है वो किया गया उसका जो इंचार्ज है उसको आशीष सूद जो कि दिल्ली सरकार के गृह मंत्री है उनको बनाया गया उसके साथ साथ इस कमेटी के अंदर डीएम एमसीडी दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे जहां मालवीय नगर में हादसा हुआ है वहां पर 18 ऐसी यूनिट्स है जिनको नोट किया गया है जो कि वायलेशन जो है वो कर रही थी उस पर भी आज कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री की तरफ से एक ज्वाइंट कमेटी का गठन जो है वो किया गया है उसका जो इंचार्ज है उसको आशीष सूद जो कि दिल्ली सरकार के गृह मंत्री है उनको बनाया गया उसके साथ साथ इस कमेटी के अंदर डीएम एमसीडी दिल्ली पुलिस और पावर डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। जहां मालवीय नगर में हादसा हुआ है वहां पर 18 ऐसी यूनिट्स है जिनको नोट किया गया है जो कि वायलेशन जो है वो कर रही थी, उस पर भी आज कार्रवाई जो है वो होगी। इंस्पेक्शन पूरी दिल्ली में आज से जो है वो शुरू किया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो यहां पर पहुंचा है उन लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि जो ये हादसा हुआ है वो बेहद दर्दनाक ये हादसा था, क्योंकि तमाम जो लोग विदेश से इलाज कराने के लिए यहाँ पर आते थे, मैक्स हॉस्पिटल आते थे, वो अपने अटेंडेंस जो है वहाँ रहते थे और उनके साथ ये हादसा हुआ। कई सारे वायलेशंस हुए, जो किचन चल रही थी, रेस्टोरेंट चल रहे थे बेसमेंट्स के अंदर, उनमें किसी के प्रकार की कोई एनओसी नहीं थी। कई सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से अब एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार की माने तो बेड एंड ब्रेकफास्ट के जो कॉन्सेप्ट था उसमें लगभग दिल्ली के अंदर 702 ऐसे होटल्स हैं जिनके पास ये लाइसेंस है, लेकिन अब जो बात सामने एक और सामने आई है कि दिल्ली सरकार की तरफ से बेड एंड ब्रेकफास्ट का जो कॉन्सेप्ट था उसकी जो पॉलिसी थी उसको एक महीने पहले ही यानी 26 मई को ही कहा जाए तो विड्रॉल कर लिया गया था। अब आप ये समझिए कि अब उस पर एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। कई सारी एमसीडी की टीमें जो है वो मालवीय नगर इलाके के अंदर जो है वो इंस्पेक्शंस कर रही हैं ये देखने के लिए कि कहां कहां पर किस किस तरीके से वायलेशन जो है वो हो रहा है। 6 कमरों के होटल्स के जरिए 25-25 कमरे जो है वो बनाए जा रहे थे, फायर सेफ्टी के कोई नॉर्म्स जो है वो अपनाए नहीं गए थे। उन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री एक जबरदस्त हाई लेवल मीटिंग का जो है वो की गई, उसमें कमेटी का ज्वाइंट कमेटी का एक गठन जो है वो किया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें अंदर की यहां पर आपको कोशिश करके दिखाएं कि किस तरीके से अब इस वक्त यहां पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहां पर जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से हादसा हुआ, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल के ठीक सामने ही था, यहाँ पर ही सबसे पहले जो है जो मरीज थे जो घायल थे उनको यहाँ पर लाया गया, ट्रॉमा सेंटर्स में लाया गया। और यहाँ पर फिलहाल जो है मुख्यमंत्री जो है वो इस वक्त पहुंची हैं, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जहां पर भी अगर कोई चूक हुई है तो उसको लेकर के सरकार अब नहीं चाहती है कि इस तरीके की कोई कमी दिल्ली के अंदर रहे जिसके कारण लोगों को हादसे का शिकार ना होना पड़े, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली के अंदर कई सारे हादसे हुए और सरकार इस पूरे मामले को लेकर के काफी संजीदा जो है वो नजर आ रही है। यही वजह है कि कमेटी का गठन किया गया है और जो भी वायलेशन करता हुआ देखा जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर अगर कहा जाए तो ये कमेटी जो है वो घूमेगी।
0: जी सुशांत बने रहिए हमारे साथ, अंशुल सिंह इज ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम दैट वेरी स्पॉट वेयर द फायर हैड अकर्ड। एंड अंशुल, नाउ द दिल्ली गवर्नमेंट इज एक्सट्रीमली सीरियस अबाउट अ क्रैकडाउन ऑन सच स्ट्रक्चर्स एंड देयर ओनर्स टू एंश्योर दैट दिस सॉर्ट ऑफ एन इंसिडेंट डज नॉट टेक प्लेस। अनफॉर्चुनेटली 21 लाइव्स आर ऑलरेडी लॉस्ट, व्हाई डिड इट हैव टू गेट टू दिस टू नाउ वेक अप?
1: Well, it is very difficult to believe what the government is saying at this point in time, because over several times through my entire career, I have covered similar stories that have happened in different parts of the national capital. And each and every time the government says that they will carry out an audit, they will make sure that all these buildings would be shut down. If I could show you this area itself, in this area in which the incident has happened, this entire area is filled with such illegal constructions. Each and every construction that has been done over here seems to be absolutely illegal, because there are commercial activities that are being done on the basement. Apart from that, there are different commercial activities that are being done out here in a residential property. If I could just show you that there are hotels which are right next to the spot where the incident has happened, Green Residency Hotel. Yet again, this is just a few 50 meters away from the spot. Now this has been shut down at this point in time. You can see yet again there is this basement that goes down. So the basement in this hotel is also absolutely functioning. There are rooms in this basement. If I could just show you inside the camera, my video journalist Satish would try to show you, and if that is visible, you can very clearly see that inside the basement as well there are rooms that have been made over here. Now all these hotels are now closed, but it is almost impossible to believe that the local administration, the government, the local beat officer, the SHO of this area, they had no idea that such properties are running blatantly out here in this entire area of Saket. Remember, as we have reported as well, that after the incident that happened in Goa, in Birch by Romeo Lane, there was an order that was given by the High Court in which it was said that an audit should be done. But even after that, 6 months down the line, all these properties are still running over here illegally. Very little to no action that has been taken by the administration. If at all any action has been taken, then that issue has also been settled by the owners of such hotels and properties as well. So it remains to be seen if at all this time the government would finally wake up and make sure that all such illegal properties are brought down, are sealed, so that the lives of innocent people who try to stay over here and try to make sure that since Saket is...
0: And one thing is very sure, Anshul, that mere word is not what is going to suffice this time around. It has to be action and very strict action against such perpetrators. The flames that have been extinguished, the questions have not. 21 people lost their lives in this horrific Delhi hotel fire. And the focus has now shifted from rescue to responsibility. With outrage mounting over safety violations and lapses, the Delhi government has ordered inquiries, made arrests and launched a city-wide crackdown to identify those responsible. India Today has accessed FIR details that have been filed against hotel owner Lovekesh. He has been booked under charges of culpable homicide. He has also been charged with negligence over combustible material. The hotel owner has been arrested. An FIR has been registered and a magisterial inquiry has been ordered to investigate possible lapses. The government says accountability will be fixed, illegal premises will be sealed and those found guilty will face action. The crackdown is now set to widen beyond the hotel where the fire broke out. A joint panel has been constituted to probe the incident, while multi-agency inspection teams will fan out across Delhi to check compliance and identify violations. Sources say 18 properties in Malviya Nagar alone have already come under the scanner, while authorities are also examining 702 properties operating under the bed and breakfast licensing scheme. We're now getting you earlier and current pictures of the hotel where that fire had broken out yesterday in the national capital. 21 lives lost, including those of foreign nationals largely who resided in that hotel. On the left side of your screens, you can see the interior shots of the hotel, how it looked when the fire had not happened. You can see there is very little movement in terms of space, especially in the dining area. We are flashing all those pictures on the left of your screens. The hotel violated several norms. On the right, you see the aftermath of that fire. The hotel has been completely gutted out. You literally see not a single speck that is left, nothing that remained of the way that fire escalated, and just how that hotel was functioning. So in the situation of a mishap that occurred yesterday and how it occurred, the hotel literally had no scope of escape for those living inside it.
8: इस दुखद घटना पर पूरा पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात जरूरी अनुमतियां नहीं है और जैसे ये बिल्डिंग भी इसकी अनुमति 2024 में दी गई जो आज ये दुखद घटना हुई है 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा उनकी अनुमति जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा
10: अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं सरकार को क्या कहना चाहिए सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची हमें इस बात का दुख है हमारी प्रिपरेशन नहीं थी हमें इस बात का दुख है मगर सरकार क्या कह रही है सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है ये आपसी एका है इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे
0: And we cut across to more breaking news just coming in. Delhi murder by fire, where that is what is in the focus, the charges against the hotel owner, where culpable homicide has certainly been pressed against him. Causing damage to the property by fire is the second charge that has been pressed against him. Negligence regarding combustible material, endangering life or safety of others is the charge that has been pressed against him. Remember, he was on the run. In fact, he himself has admitted that when the fire happened, he did pass from that property, but he just kept walking on the streets. He did not stay there. He did not try and help people because he feared for his own life. And while he made that admission, he also said that he had handed over all the responsibility of that hotel to his accountant, Jay Mishra. That is where he pinned the blame. But this perhaps is the most heartbreaking story to have emerged from Delhi. This fire tragedy is of that of the Agarwal family. Eight members of the family who lost their lives in that blaze. The Gurugram-based family that had come to Delhi to be with an ailing elder and support him through his illness. Instead, the entire family that perished in this hotel fire. In a cruel twist, the elderly patriarch whose health had brought the family together has reportedly not been told yet about the devastating loss of his loved ones. India Today spoke to Agarwal family's kin, who told us exactly what happened.
11: हमारे परिवार में से आप तो एक लड़का, उनकी मदर, बिटिया, वाइफ तो अभी ढूंढ ही रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा. हाँ, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी, उनका पता ही नहीं चल रहा वाइफ और छोटी बेटी का कहाँ है.
12: आप कहाँ से हैं?
11: हम दिल्ली से हैं.
12: और यहाँ पे किस लिए आए थे?
11: यहाँ पर जो है जिनकी विवेक अग्रवाल है उनकी डेथ हुई है, उनके फादर एडमिट आईसीयू में.
12: अच्छा.
11: तो गुड़गांव रहते हैं वो. हाँ. तो उन्होंने सामने ले लिया कि भाई आना जाना पड़ता है तो उससे बेहतर है कि यहाँ रह लेंगे.
12: हाँ, हाँ.
11: और कल ही वो कुछ लोग बाहर से आए थे. हाँ. और आपको बोले चलो यहाँ रुक जाते हैं.
12: हाँ.
11: सवेरे मिल चुके अपने चले जाएंगे. हमें थोड़ी पता था कि रात में यहाँ पर ये सब तांडव हो जाएगा, सवेरे हो जाएगा.
12: आपके कितने जानकार यहाँ पे थे? आपके कितने लोग जानकार थे यहाँ पे?
11: कहाँ पर?
12: जो रिलेटिव बता रहे हैं, आपके जानकार कितने लोग थे टोटल
11: होटल में?
12: हाँ,
11: होटल में उनके विवेक जी की मौसी, मौसा,
13: मौसा जी खुद, बीवी,
11: खुद वो
13: बच्चे,
11: बीवी बच्चे, उनकी मदर, उनकी वाइफ,
12: छह सात लोग थे.
11: छह सात लोग थे.
0: And we are shifting focus now as Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. The discussions that will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues of further cooperation in areas of energy, security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday. She is on a five-day visit to India. She is accompanied by a large delegation that comprises of ministers of foreign affairs, economy, finance, science and technology, communication and information and transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as foreign minister. This was in 2015, and as vice president in 2019, 2023, 2024 and 2025. The Venezuela delegation that will visit several sites that are connected with energy, pharmaceuticals, auto sectors. This to gain insights into India's technological and industrial capabilities and explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector, and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. Ministry of External Affairs said India and Venezuela enjoy warm and friendly relations, underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the global south. It said the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Let me take this to my colleague Pranay Upadhyay for further details of what's expected to happen today with regards to this very important bilateral and cooperation.
14: So, Venezuela's acting president, Ms. Delcy Rodriguez, been in India on a five-day visit, and she's not new to India. In fact, this is her sixth visit, and Prime Minister Narendra Modi is holding delegation-level talks with the Venezuela's acting president, Ms. Delcy Rodriguez, and the discussion will involve the full spectrum of India-Venezuela relation, and exploring the avenues of further cooperation in the areas of especially the energy security. The Venezuela oil is being controlled by the United States now. And in fact, recently when U.S. Secretary of State Marco Rubio was in India, he also discussed the energy security issues. And after that, Venezuela's acting president, Ms. Delcy Rodriguez, is also in India. So she was supposed to travel to India for the Big Cat Alliance meeting. So that meeting is deferred now, but now she's in India. And both the leaders will be discussing the energy security, trade, investment, pharmaceutical, healthcare, transportation, renewable energy. Many areas are there for both the leaders to have this discussion. And in fact, Ms. Delcy Rodriguez arrived in India yesterday, and this is her five-day visit. And she's also accompanied by a delegation. We are having her foreign minister, economy and finance minister, science and technology minister responsible for communication, information, transportation. So various important areas of discussion will be there on the table and in the agenda. And in fact, as I mentioned, that Ms. Delcy Rodriguez visited India as foreign minister of Venezuela in 2015 and as vice president in 2019, 2023, 2024, 2025. So like, she has been quite frequent to India. And she, the one interesting bit that she was also a devout follower of Satya Sai Baba of Puttaparthi. So and besides having this political engagement, she is also having a religious connection with India.
0: Right. Pranay, I want to thank you for getting us the latest. Of course, we'll keep coming back to you for further updates as part of her visit.

0: Sharda University, the world comes together at Sharda. Where are you?
1: Hey, good afternoon and thank you for tuning in to India Today. You're watching Lunch Break. I'm Suesha Sam. The quick check of the top headlines we're tracking for you this afternoon. Government swings into action. Mega inspection drive across Delhi. Properties violating norms to be sealed. 18 properties already identified. Rekha Gupta visits Max Hospital. Meet Delhi fire tragedy bravehearts. Delhi hero turned mattresses into lifesavers. Victims jumped from the top floor. He gave cushion with mattresses. Delhiites who risked it all to save victims, ordinary Delhiites, extraordinary heroism. TMC faces its toughest challenge. 60 TMC MLAs, Dam Didi and Abhishek, rebel TMC Neta, speaks to India Today, says nobody in the party heard our views, claims more TMC MLAs will join rebel camp.
2: There are more MLAs who are contacting us. They are also wanting to join this block, which is recognized as the Trinamool block in the Legislative Assembly. Past 1 month, we have not seen a direction which should come.
1: Neet aspirant dies by suicide after depression over paper leak, leaves behind heartbreaking suicide note, says don't have courage to take Neet exam again. Islamist gym sparks outrage. Shocking regressive diktat for Palakkad gym. Women must wear hijab. Men and women can't work out together. Separate timings for women. Big foreign investment push by the center. Cabinet clears key tax law changes. Capital gains tax on foreign investment, government bonds may end. Center aims to ease tax burden on overseas investors. Breaking news just coming in on the Delhi hotel fire that claimed 21 lives. Details now coming in of how the fire may have been caused due to a short circuit. This has been revealed during preliminary investigation. Two kitchens were located within the hotel, one in the basement and another on the top floor. LPG cylinders were stored inside both the kitchens. There was no explosion that involved the LPG cylinders. In fact, according to police officials, a fire of this magnitude typically spreads only when there is a short circuit that occurs within the internal wiring. A forensic examination of the building has been conducted. Remember, the owner himself has admitted to the cops that the building was in a dilapidated condition and needed a lot of repair work. Now it is coming to light, as opposed to what was being said earlier, that the LPG cylinder explosion may have caused the fire is something that has been negated, as preliminary investigation suggests that it was a short circuit in the internal wiring that caused the fire. Cutting across to my colleague Himanshu, joining us on the broadcast with further details on what the investigation has revealed, Himanshu.
3: देखिए एक चीज एकदम अभी तक की जो शुरुआती जो फॉरेंसिक जांच हुई जो तमाम टीमें मौके पे पहुंची हैं और जो कंडीशन है उसको देख करके ये लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग फैली है और इंटरनल क्योंकि जितनी तेजी से आग पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में आग ने लिया था उससे इंटरनल जो वायरिंग की जब आग होती है तब इतनी तेजी से वो पूरी बिल्डिंग में या आसपास जहां तक वो वायरिंग है वो आग फैलती है और इसीलिए पूरी तरीके से आशंका है कि इंटरनल वायरिंग में ही आग लगी थी शॉर्ट सर्किट हुआ था आग लगी और पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में लगा और गनीमत क्या रही आप सोचिए कि दो जगहों पर बेसमेंट में और ऊपर भी एक जगह सिलेंडर रखे थे लेकिन उन सिलेंडरों में धमाका नहीं हुआ, वो सिलेंडर इस आग की चपेट में नहीं आए और वो बचे रहे, वरना ये हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि अगर सिलेंडर में धमाका होता तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा बड़ा होता और एक पूरा एरिया वो डैमेज कर देता। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं मालवीय नगर थाने में, आपको बताऊं कि यहां पर ही लवकेश को रखा गया है। लवकेश को कुछ देर में अब यहां से निकालने की तैयारी हमने देखा कि हो रही है, क्योंकि उसे कोर्ट में पेश करना है। कल शाम को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद तब से यहीं पर उसे पूछताछ की जा रही है और अब से कुछ देर बाद उसे निकाला जाएगा। सबसे पहले उसका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिस चीज की हमें जानकारी मिली है कि 3 से 4 दिनों की रिमांड की मांग यहां पर पुलिस कर सकती है, क्योंकि देखिए सिस्टमैटिक तरीके से जो पूरा ये होटल जिसे सिर्फ 6 कमरे चलाने का आदेश था वो 25 कमरे बनाकर कैसे चला रहा था, सिर्फ एक नहीं बल्कि दूसरी प्रॉपर्टीज पे भी, तो ये सारी चीजें समझने के लिए पुलिस 3 से 4 दिन का रिमांड की मांग जो है कोर्ट में वो रख सकती है। जी श्वेता,
1: हिमांशु और जानकारी दीजिए कि पहले आग किस सेक्शन में लगी थी उस होटल के अंदर, और ये जो इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ था क्या वो सेक्शन में रिपेयर वर्क चल रहा था, उसकी जरूरत थी, क्योंकि लवकेश ने खुद भी एडमिट किया है कि बिल्डिंग बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में थी, बहुत तरह से रिपेयर वर्क की जरूरत थी।
3: देखिए चूंकि इस बिल्डिंग को आप देखिए तो ये एक तो एरिया बहुत ज्यादा नहीं होता, सबसे बड़ी इन बिल्डिंग्स के साथ जो वहां पे हमने इस होटल को देखा जो फ्लोरिश स्टे जिसमें आग लगी, अब आप उसके दूसरे फ्लोरिश इन पे आए या दूसरे जो तमाम इस तरीके के वहां पर होटल्स हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो फ्रंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप देखें तो ये जो हिस्सा अगर आप यहां से देख रहे हैं तो मुश्किल से इतना जो हिस्सा है वो फ्रंट का होता है, यानी करीब 12 फुट का ही फ्रंट होता है। अब इसमें डीप अगर आप चले जाएंगे तो वो 60 फीट तक है। इसमें क्या होता है कि जो पिछले के हिस्से हैं वहां पर न तो हवा और दूसरी चीजें नहीं पहुंच पाती है, सीलन भी उसमें देखने को मिलती है, तो ऐसे में जो तमाम इलेक्ट्रिक सामान है चाहे वो वायरिंग है उन सबको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। अब वो कितना केयर हो रहा था, क्या सारी चीजें थी, कहीं पर क्या फॉल्ट हुआ, जब ये पूरी फॉरेंसिक जांच हो जाएगी तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन शुरुआती चीज में एक चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई है शुरुआती जांच में कि इंटरनल वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग लगी और इंटरनल वायरिंग की वजह से वो आग बड़ी तेजी से उसने अपनी पूरी बिल्डिंग को चपेट में लिया। लेकिन कुछ तथ्यों के सामने आने के लिए, कुछ पूरी डिटेल के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट के इंतजार करना होगा, क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने पूरी बिल्डिंग का मुआयना किया है, पूरे जो बाहर मीटर लगे हुए हैं। अब आप सोचिए जब आप वहां पर पहुंचे तो आपको सबसे पहले जो फ्रंट है, क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं, फ्रंट कम है और पतला होटल है और बेसमेंट प्लस 6 फ्लोर ऊपर खड़े कर दिए हैं, तो उनके पास जो मीटर है वो लगाने की जगह बाहर है। कल जब मैं वहां पर मौजूद था एक दूसरे होटल में जहां पर साफ लिखा था कि 3 और 3 6 रूम बनाने का वहां पर उनको ऑर्डर है, तो बाहर की तरफ पूरा मीटर लगा हुआ था और बीएससीएस के ऑफिसर वहां पर पहुंचे हुए थे। तो अब दूसरे होटल की जांच की जा रही है, क्योंकि देखिए जो नक्शा होता है जब वो पास होता है एमसीटी तो वो नक्शा जो तमाम डिपार्टमेंट है उनके पास जाता है, उस आधार पर बीएससीएस या दूसरी जो एजेंसियां हैं वो तमाम बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं कि कितना मीटर का लोड देना है,

0: जतिन मंसूरी साहब हैं, इनकी गद्दे की दुकान थी। इन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपने दुकान का सारा गद्दा बाहर निकाल दिया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मंसूरी साहब, क्या मंजर था? आपने जो काम किया है वो बेहद तारीफ के लायक है।
1: मंजर भयानक था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हमने सारे गद्दे निकाल के बाहर डाल दिए सड़क पे। उन पर कूदे लोग, 7 से 8 लोग कूदे उसमें। अच्छा। उनकी सबकी जान बच गई। और उसके बाद में बहुत तगड़ी आग लगी, फायर ब्रिगेड आ गई, उसने बुझाया। फिर कैजुअल्टी के लिए हमने अपना कपड़ा दिया, बेड शीटें दी, रजाइयाँ दी, चादरें दी, वो सब हमने जो भी था सारा दुकान का सामान दे दिया हमने उनको। हमने कोई समझ नहीं देखा ये कौन है कौन नहीं है। हमने देखा ये हमारा भाई है, हमारा इंसानियत का फ़र्ज है इसकी मदद करना।

0: and cooking arrangements. Guests were told that they would cook their own meals during extended medical stays, a feature marketed as comfort and convenience that is now under intense scrutiny. Because the property stood inside a densely packed residential cluster, investigators are now examining whether cooking facilities inside guest rooms, combined with alleged safety violations, turned the building into a disaster waiting to happen. Initial reports suggest the bed and breakfast facility did not possess a valid fire NOC.
1: No, this building was not referred to us by any authority for issuance of fire safety certificate.
0: Authorities are now probing allegations that while the permission existed for just 6 rooms, the hotel had more than 20 rooms.
2: इसी होटल के नीचे फ्लोर पर आग लगी थी और धीरे धीरे जो आग है वो फैलते हुए पूरा जो होटल है उसमें आप देख रहे हैं काली लगी है और वो जो खिड़की दिखाई दे रही थी इसमें ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है तोड़ते हुए की भी तस्वीरें हैं लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो खिड़की है इसको तोड़ा गया है पूरी तरह से और इसके अंदर से लोगों को निकाला गया है.
0: And as investigators piece together the final moments before the blaze, the biggest question remains, was this a tragic accident or a disaster waiting to happen? With Arvind Oja and inputs from India Today's OSINT team, Bureau Report, India Today.
3: There have been a lot of horrific visuals that have surfaced in this, and I want to ensure that the viewer discretion goes out because some of these visuals are extremely disturbing. But there was one visual that caught my attention. I want to bring that to your notice. Look at this visual. The firefighters had to cut off a shutter. Now, possibly this is an entry or an exit. I cannot confirm that to you. Most likely an exit. But it was closed. Had this been opened, or at least opened just in time, so many of them, at least among those 21, could have rushed out and saved their own life. And why I say that, because when this shutter was broken apart by the firefighters, who also reached after a certain time, they were able to bring out at least few survivors, as is clear from the visual. And of course, we had to blur out the visual for you. But this is to help you understand that because of this, look at how charred the area is. But the only reason firefighters could bring out some of the survivors was to cut open the shutter from the middle. Imagine the number of lives that could have been saved, some of them dying of suffocation because they could not go out. This raises important questions, not just about the violations, but about the negligence. Staff members of the hotel will also be questioned now. Owner is already behind bars and he'll be investigated. But it is to understand presently at this point about what is happening and why so many hotel owners or commercial businesses are able to get away when it comes to violation of norms. And the fact is, they get away, ladies and gentlemen, because there are some in the establishment who very happily take the bribe and approve with their signatures. I want to now tell you about, in the middle of smoke and flames, ordinary locals who became the first responders. As we have seen across India, by the time rescue personnel do come and take over the efforts, ordinary locals have shown bravery and how. Residents, traders, labourers, because this was largely a commercial area, jumped in. And jumped in how? Some of them used whatever they could find. Shop owners provided ropes, mattresses, bed sheets, even bricks to break open some of the windows that were shut. Some of the shop owners, in fact, put out mattresses, cushions from their house or their shops so that someone who intends to jump in, and we saw that happen, at least can save their bones and their life. Some broke windows with bare hands and bricks as well. We saw some of these locals who had these dandas and sticks with them, rods with them, so they could help. Remember, it's a building on a blaze. There are flames. So it is not very easy for someone to go in and be able to help and save people, but they did what possibly they could. We were told some administered CPR as well. Some shifted the injured to safer spots and the hospital which was nearby. And on that note, I want to thank those individuals and local residents of Hosrani, of Malviya Nagar, who were able to at least do what they possibly could think with their presence of mind at that point to save at least some of them who were inside that hotel. So thank you. And that truly shows what being an Indian really means. Let's listen in to some of the voices.
4: जतिन मंसूरी साहब हैं, इनकी गद्दे की दुकान थी, इन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपने दुकान का सारा गद्दा बाहर निकाल दिया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मंसूरी साहब, क्या मंजर था? आपने जो काम किया है वो बेहद तारीफ के लायक है।
5: मंजर भयानक था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हमने सारे गद्दे निकाल के बाहर डाल दिए सड़क पे, उन पर कूदे लोग, 7 से 8 लोग कूदे उसमें। अच्छा। उनकी सबकी जान बच गई और उसके बाद में बहुत तगड़ी आग लगी, फायर ब्रिगेड आ गई, उसने बुझाया, फिर कैजुअल्टी के लिए हमने अपना कपड़ा दिया, बेड शीटें दी, रजाइयाँ दी, चादरें दी, वो सब हमने जो भी था सारा दुकान का सामान दे दिया हमने उनको। हमने कोई समझ नहीं देखा ये कौन है कौन नहीं है, हमने देखा ये हमारा भाई है, हमारा इंसानियत का फ़र्ज़ है किसकी मदद करना।
4: जो लोग कूद रहे थे उसमें महिला और बच्चे पुरुष सभी थे उसमें?
5: हाँ, उसमें पुरुष भी जो कूदे हैं, 2 लेडीज़ हैं और 6 पुरुष हैं जो कूदी ऊपर से, 4थी और 5वीं 3री से।
4: अच्छा जी। तो आपको भी चोटें आई हैं जब आप लोगों को बचा?
5: हाँ, मेरे पैर में घुटने में तकलीफ हो गई, झटका गया और बच्चे के पैर में कांसे लगाए, मेरा बेटा अरमान।
4: अच्छा,
5: उनके पैर में कांसे।
4: सर, आपने जो काम किया है वो एक इंसानियत की मिसाल है और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके दुकान का जो सामान है वो नुकसान हुआ है, उसका ऐसा इस्तेमाल हुआ है जिससे लोगों की जिंदगियाँ बची हैं।
5: हाँ, जिंदगी बची है।
4: तो आपको अब कितने की लगभग की लागत की आपकी दुकान की सामान आपके दुकान में?
5: लगभग 1.5 से 2 लाख का नुकसान है जी मेरा ये।
4: हाँ
5: जी,
6: होटल के सामने ही मेरी शॉप है, मंसूरी कॉटन शॉप के नाम से।
4: मंसूरी भाई, कितनी पुरानी आपकी दुकान है?
6: लगभग 40 से 45।
4: आप सोचो जो ये हादसा हुआ था और आपकी सूझबूझ से जो है कई लोगों की जानें बची, क्या मंजर था भाई साहब?
6: मंजर बहुत डरावना था, चीख पुकार थी, फ्लोर पे से सब चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प हेल्प, क्यों? बाहर कंट्री के लोग ज़्यादा। अच्छा। वो हिंदी जानते नहीं थे इसलिए हेल्प हेल्प करके वो बहुत चिल्ला रहे। तो देखा तो हमने तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से आवाज़ आ रही थी, मैट्रेसेस निकाले, कम से कम 20 से 22 मैट्रेसेस बाहर रोड पे बिछाए जिन पे 7 से 8 बंदे कूदे, जिसमें 2-3 लेडीज़ हैं, बाकी आदमी हैं, 1 बच्चा है।
4: आपको भी चोट लगी है? मैं देख रहा हूँ
6: कांच लगा है हाथ में, ये 2 कांच लगे हैं, 1 अंगूठे में, उंगली में कांच लगा है।
7: आपको बुझाने के बाद हमने रेस्क्यू किया है फायर फाइटिंग के साथ और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर, जिन लोगों को निकाला था मैंने पहले ही बताया था कि सब अनकॉन्शियस थे, मोस्टली उनमें से जो एक्सपायर हो गए हैं क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था। लास्ट राउंड जब हमने लिया था फायर फाइटिंग टीम के साथ, तो मैंने ही वो दरवाज़ा खोला लास्ट नीचे वॉशरूम का, ग्राउंड फ्लोर का, तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे, इवन जैसे फिल्मों में होता है एक दूसरे कंधे पर हाथ रखे, वो कोर्ट पर बैठी हुई थी, आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट बट आई एम नॉट कन्फर्म, और वो डाल के उसके बराबर।
8: 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से तो आग लगी थी, उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए, तो लोगों ने नीचे जम भी किया जो सेफ है, और भी सेफ लोगों को निकाला और कुछ लोग कैजुअल्टीज हैं।
9: थर्ड फ्लोर से 3 नाइजीरियन 4 नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद गए, जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है।
10: ये जो आपको यहाँ पर चैनल दिख रहा है लोहे का, इस चैनल को काटा गया है, क्या जानकारी मिल रही, क्या ताला बंद था क्या?
11: ये लोग था वो फायर वाले आए थे, उन्होंने कैंची दी थी उससे काटा है।
10: जब होटल था यहाँ पर तो आखिर इसको चैनल को बंद क्यों, ताला क्यों लगा?
11: ये इतना आइडिया नहीं है लेकिन ये बंद था, फिर इन्होंने चैनल से काटा, उससे कैंची से जो फायर वालों ने दिया, फिर अंदर घुसे
12: फायर फाइटिंग के पास,
11: उससे काटा, फिर हम अंदर घुसे,
12: लोग अंदर घुसे।
3: 21 innocent people go to live in a hotel and are dead. They have to lose their life because violations were done with regard to the hotel owner and the establishment. But among them, what has come as a heartbreaking story is that of the Agarwal family. I want to put that image on your screen. A happy moment one day and then 8 members of Agarwal family lost their life. They were staying at this hotel, this Flourish Stays, a budget hotel, BNB Sotus in Hosrani, Malviya Nagar, and they were to visit an elderly patriarch who was recuperating, receiving treatment at a nearby hospital. Instead, 8 members of this family lost their life. Just imagine the horrific scenario they must have faced in those last minutes. Here's what the kin of the deceased, their other family members are saying, and I'm told that the one who is receiving treatment for whom the family had come, he hasn't been informed yet about the level of this tragedy. Here's more.
12: हमारे परिवार में से आप तो एक लड़का, उनकी मदर, बिटिया, वाइफ तो अभी ढूंढ ही रहे हैं, उनका तो पता ही नहीं चल रहा. हाँ, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी, उनका पता ही नहीं चल रहा वाइफ का, छोटी बेटी का कहाँ है.
13: तो आप कहाँ से हैं?
12: हम दिल्ली से हैं.
13: और यहाँ पे किस लिए आए थे?
12: यहाँ पर जो है जिनकी विवेक अग्रवाल है उनकी डेथ हुई है, उनके फादर एडमिट आईसीयू में.
13: अच्छा.
12: तो गुड़गांव रहते हैं वो. हाँ. तो उन्होंने सामने ले लिया कि भाई आना जाना पड़ता है तो उससे बेहतर है कि यहाँ रह लेंगे.
13: हाँ, हाँ.
12: और कल ही वो कुछ लोग बाहर से आए थे. हाँ. और आपको बोले चलो यहाँ रुक जाते हैं.
13: हाँ.
12: सवेरे मिल चुके अपने चले जाएंगे. हमें थोड़ी पता था कि रात में यहाँ पर ये सब कांडव हो जाएगा, सवेरे हो जाएगा.
13: आपके कितने जानकार यहाँ पे थे? आपके कितने लोग जानकार थे यहाँ पे?
12: कहाँ पर?
13: जो रिलेटिव बता रहे हैं, आपके जानकार कितने लोग थे टोटल
12: होटल में?
13: हाँ,
12: होटल में उनके विवेक जी की मौसी, मौसा,
14: मौसा जी खुद, बीवी,
12: खुद वो
14: बच्चे,
12: बीवी बच्चे, उनकी मदर, उनकी वाइफ,
13: छह सात लोग थे.
15: बहुत ही अच्छे व्यक्ति, धन नहीं थे वो, और सबसे मिलनसार. और कोई ऐसा भगवान ने ऐसा कैसे उनके, मैं क्या कहना चाहूंगा, हमें खुद बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी तक. ये नहीं है कि वो भाई इस तरह की उनके साथ हादसा हुआ और कोई डेथ होगी.
16: ऐसा है कि हम पिछले जो है 5 साल से पड़ोसी हैं, और ये बहुत ही सज्जन परिवार था और बहुत हंसता खेलता. इसकी बीवी और दो बच्चे यहाँ पे रह रहे थे बड़े लंबे टाइम से. हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की चीज.
3: This was clearly not the only hotel. So India Today decided to do a reality check, and we actually found out that there are multiple commercial businesses, hotels or stays like these where violations are happening. The bigger question is, owners would want to violate. They'll want more business despite the license that has its share of restrictions. The question is, what are the authorities doing? Are all authorities blindsided by these commercial businesses? Here's a reality check.
17: The entire administration has made sure that all of these illegal properties that are running over here, they are shut down so that similar instances could not happen in the future. But the manner in which this instance has happened, and now the administration seems to be jumping into action, this is something that is very, very, very, very shocking, and remains to be seen if at all some concrete action would eventually be taken by the administration so that such instances do not repeat themselves in the coming future. With video journalist Ritesh Mishra, this is Anshul Singh for India Today.
3: Each time I report on instances like this, I want to believe that it would be the last time because of the outrage, the reality checks, the action promised by the governments and the officials. And yet, we know the reality that an incident like this will happen again unless lessons are learnt this final time. On that note, I'm heading into a very short break. Stay tuned. News and updates continue on the other side as well.

0: This is not a drought hit desert. This is Jhabua in western Madhya Pradesh. On paper, every household here was supposed to receive tap water under the Jal Jeevan Mission. But on the ground, women are still digging pits in dry riverbeds for a few liters of muddy water.
1: छह साल पहले इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। चार साल पहले वो पाइप बिछ भी गए, लेकिन उन पाइपों में आज तक पानी नहीं आया है। और यही वजह है कि गांव से करीब एक किलोमीटर दूर आकर के इन महिलाओं को इस भामची नदी पे इस तपती दोपहरी में करीब 43 डिग्री सेल्सियस में, जहां खड़े हो पाना भी मुश्किल होता है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, ये महिलाएं करीब एक किलोमीटर का सफ़र करके इस ऊबड़ खाबड़ ज़मीन को पार करके यहां पहुंचती हैं और फिर इन गड्ढों से पानी भर के वापस एक किलोमीटर दूर अपने गांव खेड़ा जाती हैं।
0: Crores were spent under the scheme, yet in village after village, water never arrived. Villagers say the pipelines were laid here in 2022, but 4 years later, not a single drop has flowed.
1: पानी आप लोग रोज ऐसे ही भरते हैं?
2: हाँ, डेली आना पड़ता है पानी भरने के लिए।
1: अच्छा।
2: सुबह सुबह शाम भी आना पड़ता है पानी। ज्यादा मेहमान आता हो तो शाम को भी आना पड़ता है। रात को 9-10 भी बज जाता है यहाँ पे।
1: अच्छा।
2: आदमी को साथ के लाना पड़ता है यहाँ पे। ये नदी है, उसमें कुछ जानवर भी रह सकते हैं। उधर से अब ये जंगल आ रहा है।
1: के गांव में तो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन आई हुई है, फिर क्यों, क्या हो गया?
2: पाइपलाइन तो आई है, लेकिन पानी नहीं आया। पानी नहीं आ रहा। पाइपलाइन तो है, 4 साल हो गया पाइपलाइन आया।
0: But Kheda is not alone. In the Bakatpura ward of Para Panchayat, residents say the scheme was officially completed and handed over in 2024. Yet, families are still paying for tanker water.
1: लेकिन ये नल आप देख रहे हैं, पूरी टोटी घूम गई, लेकिन नल में से जल नहीं निकला है।
0: The taps installed under the mission remain bone dry. In fact, these taps have become symbols of a failed promise.
1: आखिरी बार इन नलों में से पानी कब आया था?
3: आखिरी बार सर 2023 में ही आया था सर, उसके बाद तो हमने नहीं देखा सर।
1: हाँ, तो अब ये क्या इस्तेमाल में आ रहे नल?
3: अभी सर ये कोई कोई जगह तो टूट गया और कोई जगह ये बकरी बांध रखी है, इसी ये इस्तेमाल कर रहे हैं सर इनका हम।
0: The story repeats itself in Dhandalpura. A 50,000 liter water tank was built. Pipelines were laid, but inside the tank there is barely ankle deep water.
1: पानी की जो टंकी है जो बनी हुई है धांधलपुरा गांव में, 50,000 लीटर पानी की क्षमता जिस टंकी की होनी चाहिए उसमें अगर आप देखें तो फिलहाल महज कुछ फिट पानी इसमें फिलहाल बना हुआ है। और गांव वालों का आरोप है कि ये पानी भी बहुत पुराना है। ये जो आप पानी देख रहे हैं ये होगा महज आधा फिट पानी, और अगर पूरे पानी को मिला भी लिया जाए तो ये 1,000 लीटर पानी भी नहीं है इस वक्त इस पानी की टंकी में।
0: The system meant to purify drinking water remains unused because it was never given an electricity connection.
1: टंकी से पानी आता है? नहीं,
4: अभी फिलहाल तो नहीं आता है सर।
1: कब से?
4: पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहा है सर।
1: अच्छा, जी। कितना पानी है?
4: समथिंग कुछ ही पानी है सर, और वो भी इतना गंदा है सर।
1: कितना क्या लग रहा है आपको, ये पानी कब से है?
4: ये सर 2 साल पुराना, जो जब स्टार्ट हुई थी एक दो दिन आया था पानी, उस समय का पानी है, इसके बाद तो फिर पानी आया नहीं जी।
1: और आप देखिए, इस पानी को साफ करने के लिए जो मशीन यहाँ लगाई गई है, ये जो इस पे लिखा हुआ है वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम, वो वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ लगा तो दिया गया, लेकिन वो चालू कहाँ से हो? आप ये कनेक्शन इसका कहाँ से जाएगा, ये भी हम आपको दिखा देते हैं।
0: Under the Jal Jeevan Mission, nearly 430 crore rupees has been spent in Jhabua district. Official records show that work has been completed in 519 out of 713 villages and handed over to local panchayats. In Kheda village, works worth 75 lakh rupees have been executed. In Para Panchayat, projects worth 50 lakh rupees have been completed. And in Dhandalpura, over 1.09 crore rupees has been spent on water tanks and pipeline infrastructure. So where did the system fail? The Public Health Engineering Department says projects are completed and handed over to Panchayat. The minister cites summer conditions and falling groundwater levels.
5: जो हमारे रनिंग में काम है तो कुछ जगह दिक्कत आ रही है पानी को लेकर के वाटर लेवल डाउन होने के कारण से.
0: The files say the work is complete, the expenditure is accounted for. The big question, if not on ground, where did the crows go? And why is no one monitoring it? Residents of Jhabua are desperate for a reply. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
6: All right, on one hand, while politicians disappoint you when it comes to water, there is a good news that came our way. This is about how a tank, a water tank, has been turned into a classroom for the underprivileged. We leave you with this story.

0: An unused water tank has become a beacon of hope for children from underprivileged families in Mayapur in Hyderabad. Social activist Potukuchi Srinivas has transformed the building into a classroom that caters to the needy.
1: कार शटर में या अपार्टमेंट में चलने के टाइम में थोड़ा बच्चा ज्यादा हो गया 70 बच्चे हो गया ऐसा बच्चा हो गया तो उधर थोड़ा तकलीफ हो रहे रेसिडेंट्स को 2008 में शुरू किया होने के बाद कॉलोनी भी बड़ी हो गया इधर एसोसिएशन वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं है
0: श्रीनिवास हु लेफ्ट अ कॉर्पोरेट जॉब डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग चिल्ड्रन ऑफ वॉचमैन डोमेस्टिक वर्कर्स एंड अदर लो इनकम फैमिलीज
1: 213 बच्चा ये पॉलिटेक्निक बीटेक पढ़ा है अभी तक ये 2003 से 2007 से अभी तक दो ये पूरा 90% काम मिल गया और 1200 तक पॉलिटेक्निक पढ़ा है वो भी काम कर रहा है वो अच्छा स्टोरी बोलना बोले तो मैं इधर खाना भी देता बच्चों को हम लोग क्यों बोले तो ये कॉलेज होने के बाद आता है ऐसा सेंटर हमारा 26 सेंटर है तेलंगाना स्टेट में स्कूल में अभी शिक्षा सेतु बोल के हम लोग नया प्रोग्राम शुरू किया
2: बोले तो मेरा फीस भी नहीं बनते थे सर मेरा अभी अम्मी अब बोले तो ऐसा सिचुएशंस में उन लोग अभी काम करके पैसे लेके आते सुबह से रात तक उन लोग को 500-400 ऐसा मिलते इसलिए मैं जब से 9th क्लास से आ रहा हूँ ट्रस्ट को मेरा जो भी खाना और स्नैक्स और सब पूरे ट्रस्टी से देते थे बोले तो यहाँ पर लगाते थे
3: इन माई फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली आई एम वेरी लो एंड सडनली गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू अस
0: What began as a small effort to help a few children has turned into a life-changing educational movement.
4: हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर 2008 से जब ये शुरू हुआ तब से लेकर अब तक यहाँ से लाभ उठाते रहे यहाँ पर बच्चों को मुफ्त पढ़ाई खाना जो शिक्षा खाना और आगे चलकर उनके जो कॉलेज की फीस होती है उसमें भी सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है लगातार यहाँ से बच्चे निकलकर इंजीनियर्स बने हैं डॉक्टर्स बने हैं ऐसा यहाँ के जो ट्रस्ट चेयरमैन है पी श्रीनिवास जी ने बताया है
0: With Abdul Bashir in Hyderabad, Bureau Report, India Today.
5: Order for Jennifer C.
6: Is this my double shot, double cream, double froth, double pump, double whip, double sleeve?
5: Yeah. Can you handle that much caffeine?
6: Did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
5: Oh, really? That's great.
6: Seriously, did you know Discover automatically doubles all the cash back you've earned at the end of your first year?
5: Yeah, you just said that.
6: Did you say I just said that?
5: Yeah, I'm cutting you off.
6: I can't have any more? Why not?
7: You earn, we match. Discover cashback match. See terms at discover.com/creditcard.
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
10: To right field, and it will leave.
9: From the first pitch of the season to the stretch run.
10: And that's the ball game.
9: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
11: We'll be right back.

0: इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी इसकी अनुमति 2024 में दी गई, जो आज ये दुखद घटना हुई है, 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई। तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति जो वॉयलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
1: जब स्वीकृत 5 कमरे की जगह 25 कमरे का GST वसूल रहे थे तो कोई तहखाने में तो नहीं चल रहा था, कई मंजिला भवन में चल रहा था, तो सिस्टम देख नहीं रहा था, पुलिस देख नहीं रही थी, वसूली करने वाले देख नहीं रहे थे, फायर वाले देख नहीं रहे थे। तो मैं तो मानता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है। विज्ञापन के साथ मैक्स हॉस्पिटल के सामने चलाया जा रहा था, क्या तब नहीं देखा गया था कि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट? इसीलिए मैं कहता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है और इसके जिम्मेदार ये ट्रिपल इंजन की सरकार भी हुई।

0: This is Jhabua in western Madhya Pradesh. On paper, every household here was supposed to receive tap water under the Jal Jeevan Mission. But on the ground, women are still digging pits in dry riverbeds for a few liters of muddy water. Villagers say the pipelines were laid here in 2022. But 4 years later, not a single drop has flowed.
1: पानी आप लोग रोज ऐसे ही भरते हैं?
2: हाँ, डेली आना पड़ता है पानी भरने के लिए.
1: अच्छा.
2: सुबह सुबह शाम भी आना पड़ता है पानी. ज्यादा मेहमान आता हो तो शाम को भी आना पड़ता है. रात को 9-10 भी बज जाता है यहाँ पे.
1: अच्छा.
2: आदमी को साथ के लाना पड़ता है यहाँ पे. यह नदी है, उसमें कुछ जानवर भी रह सकते हैं. उधर से अब यह जंगल आ रहा है.
1: के गांव में तो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन आई हुई है, फिर क्यों, क्या हो गया?
2: पाइपलाइन तो आई है लेकिन पानी नहीं आया.
0: But Kheda is not alone. In the Bakatpura ward of Para Panchayat, residents say the scheme was officially completed and handed over in 2024. Yet, families are still paying for tanker water. The taps installed under the mission remain bone dry. In fact, these taps have become symbols of a failed promise.
1: आखिरी बार इन नलों में से पानी कब आया था?
3: आखिरी बार सर 2023 में ही आया था सर. उसके बाद तो हमने नहीं देखा सर. हाँ,
1: तो अब ये क्या इस्तेमाल में आ रहे नल?
3: अभी सर ये कोई जगह तो टूट गया और कोई जगह ये बकरी बांध रखी है, इसी ये इस्तेमाल कर रहे हैं सर इनका हम.
0: The story repeats itself in Dhandalpura.
1: पानी की जो टंकी है जो बनी हुई है धांधलपुरा गांव में, 50,000 लीटर पानी की क्षमता जिस टंकी की होनी चाहिए उसमें अगर आप देखें तो फिलहाल महज कुछ फिट पानी इसमें फिलहाल बना हुआ है. और गांव वालों का आरोप है कि ये पानी भी बहुत पुराना है. ये जो आप पानी देख रहे हैं ये होगा महज आधा फिट पानी, और अगर पूरे पानी को मिला भी लिया जाए तो ये 1,000 लीटर पानी भी नहीं है इस वक्त इस पानी की टंकी में.
0: The system meant to purify drinking water remains unused because it was never given an electricity connection.
1: टंकी से पानी आता है? नहीं,
4: अभी फिलहाल तो नहीं आता है सर.
1: कब से?
4: पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहा है सर.
1: अच्छा. जी, कितना पानी है अभी?
4: समथिंग कुछ ही पानी है सर, और वो भी इतना गंदा है सर.
1: कितना है, क्या लग रहा है आपको ये पानी कब से है?
4: ये सर 2 साल पुराना, जो जब स्टार्ट हुई थी एक दो दिन आया था पानी, उस समय का पानी है. इसके बाद तो फिर पानी आया नहीं जी.
1: और आप देखिए, इस पानी को साफ करने के लिए जो मशीन यहाँ लगाई गई है, ये जो इस पे लिखा हुआ है वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम, वो वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ लगा तो दिया गया लेकिन वो चालू कहाँ से हो? आप ये कनेक्शन इसका कहाँ से जाएगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं.
0: Under the Jal Jeevan Mission, nearly 430 crore rupees has been spent in Jhabua district. Official records show that work has been completed in 519 out of 713 villages and handed over to local panchayats. In Kheda village, works worth 75 lakh rupees have been executed. In Para Panchayat, projects worth 50 lakh rupees have been completed. And in Dhandalpura, over 1.09 crore rupees has been spent on water tanks and pipeline infrastructure. So where did the system fail? The Public Health Engineering Department says projects are completed and handed over to Panchayat. The minister cites summer conditions and falling groundwater levels.
5: जो हमारे रनिंग में काम है तो कुछ जगह दिक्कत आ रही है पानी को लेकर के, वाटर लेवल डाउन होने के कारण से.
0: The files say the work is complete, the expenditure is accounted for. The big question, if not on ground, where did the crores go? And why is no one monitoring it? Residents of Jhabua are desperate for a reply. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
6: Get Real India, the stories that really matter from the ground. The Jal Jeevan Mission, hopefully someone's watching. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.

0: This is Jhabua in western Madhya Pradesh. On paper, every household here was supposed to receive tap water under the Jal Jeevan Mission. But on the ground, women are still digging pits in dry riverbeds for a few liters of muddy water. Villagers say the pipelines were laid here in 2022. But 4 years later, not a single drop has flowed.
1: पानी आप लोग रोज ऐसे ही भरते हैं?
2: हाँ, डेली आना पड़ता है पानी भरने के लिए.
1: अच्छा.
2: सुबह सुबह शाम भी आना पड़ता है पानी. ज्यादा मेहमान आता हो तो शाम को भी आना पड़ता है. रात को 9-10 भी बज जाता है यहाँ पे.
1: अच्छा.
2: आदमी को साथ के लाना पड़ता है यहाँ पे. यह नदी है, उसमें कुछ जानवर भी रह सकते हैं. उधर सब ये जंगल आ रहा है.
1: के गांव में तो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन आई हुई है, फिर क्यों, क्या हो गया?
2: पाइपलाइन तो आई है लेकिन पानी नहीं आया.
0: But Kheda is not alone. In the Bakatpura ward of Para Panchayat, residents say the scheme was officially completed and handed over in 2024. Yet, families are still paying for tanker water. The taps installed under the mission remain bone dry. In fact, these taps have become symbols of a failed promise.
1: आखिरी बार इन नलों में से पानी कब आया था?
3: आखिरी बार सर 2023 में आया था सर. उसके बाद तो हमने नहीं देखा सर. हाँ,
1: तो अब ये क्या इस्तेमाल में आ रहे नल?
3: अभी सर ये कोई कोई जगह तो टूट गया और कोई जगह ये बकरी बांध रखी है, इसी ये इस्तेमाल कर रहे सर इनका हम.
0: The story repeats itself in Dhandalpura.
1: पानी की जो टंकी है जो बनी हुई है धांधलपुरा गांव में, 50,000 लीटर पानी की क्षमता जिस टंकी की होनी चाहिए उसमें अगर आप देखें तो फिलहाल महज कुछ फिट पानी इसमें फिलहाल बना हुआ है. और गांव वालों का आरोप है कि ये पानी भी बहुत पुराना है. ये जो आप पानी देख रहे हैं ये होगा महज आधा फिट पानी, और अगर पूरे पानी को मिला भी लिया जाए तो ये 1,000 लीटर पानी भी नहीं है इस वक्त इस पानी की टंकी में.
0: The system meant to purify drinking water remains unused because it was never given an electricity connection.
1: टंकी से पानी आता है? नहीं,
4: अभी फिलहाल तो नहीं आता है सर.
1: कब से?
4: पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहा है सर.
1: अच्छा. जी, कितना पानी है अभी?
4: समथिंग कुछ ही पानी है सर, और वो भी इतना गंदा है सर.
1: कितना है, क्या लग रहा है आपको, ये पानी कब से है?
4: ये सर 2 साल पुराना, जो जब स्टार्ट हुई थी एक दो दिन आया था पानी, उस समय का पानी है. इसके बाद तो फिर पानी आया नहीं. अच्छा. जी.
1: और आप देखिए इस पानी को साफ करने के लिए जो मशीन यहाँ लगाई गई है, ये जो इस पे लिखा हुआ है वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम, वो वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ लगा तो दिया गया लेकिन वो चालू कहाँ से हो, आप ये कनेक्शन इसका कहाँ से जाएगा, ये भी हम आपको दिखा देते हैं.
0: Under the Jal Jeevan Mission, nearly 430 crore rupees has been spent in Jhabua district. Official records show that work has been completed in 519 out of 713 villages and handed over to local panchayats. In Kheda village, works worth 75 lakh rupees have been executed. In Para Panchayat, projects worth 50 lakh rupees have been completed. And in Dhandalpura, over 1.09 crore rupees has been spent on water tanks and pipeline infrastructure. So where did the system fail? The Public Health Engineering Department says projects are completed and handed over to Panchayat. The minister cites summer conditions and falling groundwater levels.
5: जो हमारे रनिंग में काम है तो कुछ जगह दिक्कत आ रही है पानी को लेकर के, वाटर लेवल डाउन होने के कारण से.
0: The files say the work is complete, the expenditure is accounted for. The big question, if not on ground, where did the crores go? And why is no one monitoring it? Residents of Jhabua are desperate for a reply. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
6: Get Real India, the stories that really matter from the ground. The Jal Jeevan Mission, hopefully someone's watching. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
7: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: इस दुखद घटना पर पूरा प्रशासन चिंतित है, व्यथित है और हम सब इसको मिलकर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके संदर्भ में जो एनफोर्समेंट के एक्शन है, जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, और जैसे ये बिल्डिंग भी इसकी अनुमति 2024 में दी गई, जो आज ये दुखद घटना हुई है 2024 में 6 कमरों की B&B चलाने की अनुमति दी गई, तो ऐसे ही अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त NOCs नहीं है उसको सील किया जाएगा, उनकी अनुमति जो वॉयलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा।
1: जब स्वीकृत 5 कमरे की जगह 25 कमरे का GST वसूल रहे थे तो कोई तहखाने में तो नहीं चल रहा था, कई मंजिला भवन में चल रहा था, तो सिस्टम देख नहीं रहा था, पुलिस देख नहीं रही थी, वसूली करने वाले देख नहीं रहे थे, फायर वाले देख नहीं रहे थे। तो मैं तो मानता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है। विज्ञापन के साथ मैक्स हॉस्पिटल के सामने चलाया जा रहा था, क्या तब नहीं देखा गया था कि एक ही एंट्री एक ही एग्जिट? इसीलिए मैं कहता हूं ये दुर्घटना नहीं हत्या है और इसके जिम्मेदार ये ट्रिपल इंजन की सरकार भी हुई।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: This is Jhabua in western Madhya Pradesh. On paper, every household here was supposed to receive tap water under the Jal Jeevan Mission. But on the ground, women are still digging pits in dry riverbeds for a few liters of muddy water. Villagers say the pipelines were laid here in 2022. But 4 years later, not a single drop has flowed.
1: पानी आप लोग रोज ऐसे ही भरते हैं?
2: हाँ, डेली आना पड़ता है पानी भरने के लिए.
1: अच्छा.
2: सुबह सुबह शाम भी आना पड़ता है पानी. ज्यादा मेहमान आता हो तो शाम को भी आना पड़ता है. रात को 9-10 भी बज जाता है यहाँ पे.
1: अच्छा.
2: आदमी को साथ के लाना पड़ता है यहाँ पे. यह नदी है, उसमें कुछ जानवर भी रह सकते हैं. उधर से भी जंगल आ रहा है.
1: के गांव में तो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन आई हुई है, फिर क्यों, क्या हो गया?
2: पाइपलाइन तो आई है लेकिन पानी नहीं आया.
0: But Kheda is not alone. In the Bakatpura ward of Para Panchayat, residents say the scheme was officially completed and handed over in 2024. Yet, families are still paying for tanker water. The taps installed under the mission remain bone dry. In fact, these taps have become symbols of a failed promise.
1: आखिरी बार इन नलों में से पानी कब आया था?
3: आखिरी बार सर 2023 में आया था सर. उसके बाद तो हमने नहीं देखा सर. हाँ,
1: तो अब ये क्या इस्तेमाल में आ रहे नल?
3: अभी सर ये कोई कोई जगह तो टूट गया और कोई जगह ये बकरी बांध रखी है, इसी ये इस्तेमाल कर रहे सर इनका हम.
0: The story repeats itself in Dhandalpura.
1: पानी की जो टंकी है जो बनी हुई है धांधलपुरा गांव में, 50,000 लीटर पानी की क्षमता जिस टंकी की होनी चाहिए उसमें अगर आप देखें तो फिलहाल महज कुछ फिट पानी इसमें फिलहाल बना हुआ है. और गांव वालों का आरोप है कि ये पानी भी बहुत पुराना है. ये जो आप पानी देख रहे हैं ये होगा महज आधा फिट पानी, और अगर पूरे पानी को मिला भी लिया जाए तो ये 1,000 लीटर पानी भी नहीं है इस वक्त इस पानी की टंकी में.
0: The system meant to purify drinking water remains unused because it was never given an electricity connection.
1: टंकी से पानी आता है? नहीं,
4: अभी फिलहाल तो नहीं आता है सर.
1: कब से?
4: पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहा है सर.
1: अच्छा. जी, कितना पानी है अभी?
4: समथिंग कुछ ही पानी है सर, और वो भी इतना गंदा है सर.
1: कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? ये पानी कब से है?
4: ये सर 2 साल पुराना, जो जब स्टार्ट हुई थी एक दो दिन आया था पानी, उस समय का पानी है. इसके बाद तो फिर पानी आया नहीं. जी.
1: और आप देखिए इस पानी को साफ करने के लिए जो मशीन यहाँ लगाई गई है, ये जो इस पे लिखा हुआ है वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम, वो वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ लगा तो दिया गया लेकिन वो चालू कहाँ से हो? आप ये कनेक्शन इसका कहाँ से जाएगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं.
0: Under the Jal Jeevan Mission, nearly 430 crore rupees has been spent in Jhabua district. Official records show that work has been completed in 519 out of 713 villages and handed over to local panchayats. In Kheda village, works worth 75 lakh rupees have been executed. In Para Panchayat, projects worth 50 lakh rupees have been completed. And in Dhandalpura, over 1.09 crore rupees has been spent on water tanks and pipeline infrastructure. So where did the system fail? The Public Health Engineering Department says projects are completed and handed over to Panchayat. The minister cites summer conditions and falling groundwater levels.
5: जो हमारे रनिंग में काम है तो कुछ जगह दिक्कत आ रही है पानी को लेकर के, वाटर लेवल डाउन होने के कारण से.
0: The files say the work is complete, the expenditure is accounted for. The big question, if not on ground, where did the crores go? And why is no one monitoring it? Residents of Jhabua are desperate for a reply. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
6: Get Real India, the stories that really matter from the ground. The Jal Jeevan Mission, hopefully someone's watching. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
7: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: This is Jhabua in western Madhya Pradesh. On paper, every household here was supposed to receive tap water under the Jal Jeevan Mission. But on the ground, women are still digging pits in dry riverbeds for a few liters of muddy water. Villagers say the pipelines were laid here in 2022. But 4 years later, not a single drop has flowed.
1: पानी आप लोग रोज ऐसे ही भरते हैं?
2: हाँ, डेली आना पड़ता है पानी भरने के लिए.
1: अच्छा.
2: सुबह सुबह शाम भी आना पड़ता है पानी. ज्यादा मेहमान आता हो तो शाम को भी आना पड़ता है. रात को 9-10 भी बज जाता है यहाँ पे.
1: अच्छा.
2: आदमी को साथ के लाना पड़ता है यहाँ पे. यह नदी है, उसमें कुछ जानवर भी रह सकते हैं. उधर से भी जंगल आ रहा है.
1: के गांव में तो जल जीवन मिशन की पाइपलाइन आई हुई है, फिर क्यों, क्या हो गया?
2: पाइपलाइन तो आई है लेकिन पानी नहीं आया.
0: But Kheda is not alone. In the Bakatpura ward of Para Panchayat, residents say the scheme was officially completed and handed over in 2024. Yet, families are still paying for tanker water. The taps installed under the mission remain bone dry. In fact, these taps have become symbols of a failed promise.
1: आखिरी बार इन नलों में से पानी कब आया था?
3: आखिरी बार सर 2023 में ही आया था सर. उसके बाद तो हमने नहीं देखा सर. हाँ,
1: तो अब ये क्या इस्तेमाल में आ रहे नल?
3: अभी सर ये कोई कोई जगह तो टूट गया और कोई जगह ये बकरी बांध रखी है, इसी ये इस्तेमाल कर रहे हैं सर इनका हम.
0: The story repeats itself in Dhandalpura.
1: पानी की जो टंकी है जो बनी हुई है धांधलपुरा गांव में, 50,000 लीटर पानी की क्षमता जिस टंकी की होनी चाहिए उसमें अगर आप देखें तो फिलहाल महज कुछ फिट पानी इसमें फिलहाल बना हुआ है. और गांव वालों का आरोप है कि ये पानी भी बहुत पुराना है. ये जो आप पानी देख रहे हैं ये होगा महज आधा फिट पानी, और अगर पूरे पानी को मिला भी लिया जाए तो ये 1,000 लीटर पानी भी नहीं है इस वक्त इस पानी की टंकी में.
0: The system meant to purify drinking water remains unused because it was never given an electricity connection.
1: टंकी से पानी आता है? नहीं,
4: अभी फिलहाल तो नहीं आता है सर.
1: कब से?
4: पिछले 2 साल से तो नहीं आ रहा है सर.
1: अच्छा. जी, कितना पानी है अभी?
4: समथिंग कुछ ही पानी है सर, और वो भी इतना गंदा है सर.
1: कितना है, क्या लग रहा है आपको ये पानी कब से है?
4: ये सर 2 साल पुराना, जो जब स्टार्ट हुई थी एक दो दिन आया था पानी, उस समय का पानी है. इसके बाद तो फिर पानी आया नहीं. जी.
1: और आप देखिए इस पानी को साफ करने के लिए जो मशीन यहाँ लगाई गई है, ये जो इस पे लिखा हुआ है वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम, वो वाटर डिसइंफेक्शन सिस्टम जो है वो यहाँ लगा तो दिया गया लेकिन वो चालू कहाँ से हो, आप ये कनेक्शन इसका कहाँ से जाएगा, ये भी हम आपको दिखा देते हैं.
0: Under the Jal Jeevan Mission, nearly 430 crore rupees has been spent in Jhabua district. Official records show that work has been completed in 519 out of 713 villages and handed over to local panchayats. In Kheda village, works worth 75 lakh rupees have been executed. In Para Panchayat, projects worth 50 lakh rupees have been completed. And in Dhandalpura, over 1.09 crore rupees has been spent on water tanks and pipeline infrastructure. So where did the system fail? The Public Health Engineering Department says projects are completed and handed over to Panchayat. The minister cites summer conditions and falling groundwater levels.
5: जो हमारे रनिंग में काम है तो कुछ जगह दिक्कत आ रही है पानी को लेकर के, वाटर लेवल डाउन होने के कारण से.
0: The files say the work is complete, the expenditure is accounted for. The big question, if not on ground, where did the crores go? And why is no one monitoring it? Residents of Jhabua are desperate for a reply. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
6: Get Real India, the stories that really matter from the ground. The Jal Jeevan Mission, hopefully someone's watching. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.
7: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
8: What about me, Jack? What about me?
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
8: Well played, Jack. Well played.
7: Jack FM, playing what we want.

0: Banerjee loyalists that they are the reasons that these defections are taking place? Or is it finally that that politics of intimidation is being exposed, and of course those wads of currency notes, termite-eaten currency notes, that reflects the rot in the state, ma'am?
1: Yeah, I think that, you know, I'm happy that Shantanu Sen has spoken out finally. The reason being that, you know, when you're in politics, there is also a responsibility, which I wish he had fulfilled while he was an MP. That would have carried much more weight. Frankly speaking, I am a little upset because when he had the power to do so, he didn't speak out.
0: But he says he did. The moment he spoke up, his daughter was threatened that she will not pass her MBBS exams. His wife, who's a corporator, she was in the line of fire of, as he puts it, of TMC leaders and cadre.
1: Yeah, yeah. Well, you know, if that is the case, if that is Shantanu's case, I'm happy that he's spoken out. As I said, it is good that he has spoken out, so that we have a sense of how intimidation worked. But what I am hearing is that this intimidation was across the board. And if that is across, and I remember that during the Arjikar case, there were so many people, including myself, who expressed outrage about it.
0: Yes.
1: The problem is that all of these people, having expressed their outrage, then scuttled back to the Trinamool Congress. That's what upsets me. Why the Trinamool Congress is not the best of parties? It never was, and it wasn't so even after it lost, when it lost the election. The problem is, why did people scuttle back? And that is a problem. But having said that, the Trinamool Congress's record of intimidation and violence goes back not just now, but it goes back to just before 2009 to 2011, when it was gaining ground in West Bengal. Yes. Against the Trinamool Congress.
0: Against the left. But tell me this, ma'am, these wads of termite-eaten currency notes.
1: There were terrible incidents of violence. The media was under pressure. The media was attacked. And I remember all of this very vividly.
0: Yes.
1: And if you're looking at this wads of cash, it's just that there are more piles of money to be found.
0: Yes. And let me bring in Mr. Satendra Singh to respond to that. Will the Enforcement Directorate actually find these piles of cash, termite-eaten cash or otherwise, and then prosecute, punish, so that those cases are taken to their logical conclusion, sir? Because the allegation is the Enforcement Directorate, NIA, Income Tax Department, CBI, they're all a handmaiden of the government. BJP ke tactics, pressure dalti hai BJP, to wo opposition ke khilaaf jate hai, sir. Satendra Singh, sir.
2: Gaurav ji, aapko, mere co-panelist aur India Today ke sabhi darshakon ko namaskar. Dekhi, ye allegation to pehle bhi lagate rahe. Jab bhi kisi ke khilaaf rajnitik neta ke khilaaf karwai hoti, wo hi kehta hai ki ye sarkar ke saare pe kaam kar rahe hain. Koi bhi ye nahi kehta ki hum paak saaf hain. ये सब इस्तेमाल नहीं करते हैं आप. टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम जिसमें पार्थो चटर्जी के यहाँ जब छापा पड़ा था तब भी यही कहा गया कि ईडी पिंजरे का तोता है. लेकिन अब जांच धीरे धीरे अपने लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ रही है. मनी ट्रेल पकड़ी गई है तो अब अभिषेक बनर्जी को बुलाया गया तो फिर यही कहा जा रहा है कि राजनीति. पहले कहते थे साहब चुनाव है, सरकार गिरा नहीं है, सरकार जनता ने गिरा दी. अब कहते हैं नहीं, शायद उन पर पाला बदलने का आरोप लगाया जा रहा है. तो देखिए, जो केसेज हैं वो इन्वेस्टिगेशन चाहे ईडी करे, सीबीआई करे, एनआईए करे, ये सब कानून के तहत है. अब ये दिमक लगे नोट मिल रहे हैं, इसका कोई जवाब है किसी के पास? ये सीबीआई या ईडी ने तो नहीं रखे वहां ले जाके. जांच होगी, पता चलेगा। तो आरोप लगाना एजेंसियों पे बहुत ही आसान है
0: जी जी जी, क्योंकि चरण सिंह सापरा जी, ये जो दीमक लगे नोट है, टर्माइट ईटन करेंसी, व्हेन यू लुक एट दैट टर्माइट ईटन करेंसी रिकवर्ड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन रूम, एंड वेपन इज रिकवर्ड देयर, व्हेन माउंटेन्स ऑफ कैश आर रिकवर्ड एंड सीन ऑन टेलीविजन इन कनेक्शन विद द टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, विल ऑल ऑफ दिस बी एक्सेप्टेबल टू द इंडिया ब्लॉक इन द नेम ऑफ फाइटिंग the ruling party at the center, or now the ruling party in the state?
3: No, I don't think so. Any corrupt practices will be supported by any party, including Congress party, in the India Gathbandhan. Let me be very clear. But what Mr. Satendra Singh was talking now, I would like to quote certain examples. Ki Satendra Singh ji, is desh ne ye bhi to dekha hai ki desh ke pradhan mantri Ajit Pawar ko kehte hain natural corrupt party aur sabse bhrasht mantri kehte hain. 70,000 crore का उनके ऊपर आरोप लगता है, ईडी के केस होते, सीबीआई के केस होते हैं, और फिर 48 घंटे के बाद में उनको महाराष्ट्र राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट की चाबी दे दी जाती है, और फिर एक एक करके वो केस जो है वो सब बरी हो जाते हैं। ये खाली अजीत पवार के केस में नहीं, यही हेमंता बिस्वा शर्मा के केस में हुआ, यही शुभेंदु अधिकारी तो नारदा केस के अंदर तो हमने वीडियो पर देखा ना पैसे पकड़ते हुए, तो फिर उस केस को कैसे आप दबा सकते हैं, या ये शासन प्रशासन किस तरह से दबा सकता है? इसी तरह से अनेक लोग हैं, नारायण राणे हैं, या महाराष्ट्र के और 5-5 मंत्री अभी भी हैं जिनके खिलाफ
0: सिंह जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे, मैं सभी
3: यानी बीजेपी उनको वॉशिंग मशीन में धो देती है कमल डिटर्जेंट से, तो इसके ऊपर भी तो विपक्ष को अपना स्टैंड रखना पड़ेगा।
0: सत्येंद्र सिंह टू रिस्पॉन्ड, बिकॉज दिस इज अ इशू ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोब एजेंसी। सो तुहिन, आई कम टू यू मिस्टर सिन्हा टू रिस्पॉन्ड टू इट पॉलिटिकली, लेकिन सत्येंद्र सिंह जी, ये क्या बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं सभी नेता और जांच खत्म हो जाती है?
2: अब ये वॉशिंग मशीन का आरोप पिछले 3-3.5 साल से चल रहा है। अब एक बार तो कहते हैं कि नहीं साहब, किसी ने कोई अपराध ही नहीं किया है, फिर कहते हैं कि उसको वॉशिंग मशीन में धो दिया गया है। स्टैंड बदलते रहते हैं राजनीति के, तो क्या हमारे देश की जो
3: कानून बदल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं,
2: देखिए आप, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, क्या इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है? क्या हमारे न्यायालय को भी आप यही कहना चाहेंगे, न्याय व्यवस्था को, जहां हर चीज सामने रखी जाती है?
3: गौरव, वन मोर थिंग,
0: okay, let me get Tuhin Sinha to respond to this. I want Tuhin Sinha to respond to this BJP's washing machine and Kamal Chhap detergent, as Charan Singh Sapra puts it, sir. Respond to this.
4: No, Gaurav, the only washing machine is the one where, you know, in Kerala, you fight the left parties, but side with the same, you collaborate with the same left parties in the center. No, so that is the washing machine of the opposition. Beech mein mat boliye, background music mat dijiye, Sapra sahab, background music mat dijiye, thoda shant baithiye. Suniye, aapke beech mein meri
3: boliye.
0: Okay.
4: Arre pointed answer hi de raha hu. अगर कोई केस प्रमाणित नहीं हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उस नहीं प्रमाणित कर पाई है, शुड वी कीप अ पॉलिटिशियन ऑस्ट्रोसाइज फॉर लाइफ? वुड यू बी हैप्पी इफ वी डू दैट टू यू? इन पॉलिटिक्स वी मेक एलिगेशंस, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैव नॉट बीन एबल टू प्रोवाइड, हैव नॉट बीन एबल टू गेट एविडेंस विथ रिगार्ड टू दैट, वी कैनॉट बैनिश पीपल फॉर लाइफ. The point is, I don't understand this desperation of Mr. Sapra to defend the TMC today. He should join the TMC. There are two questions over here, Gaurav. Is TMC seeped in crime? Yes. You know, we have multiple evidence of that, whether it is the teachers recruitment
0: scam. Sir, again,
4: scam,
0: we will wait for courts
4: is,
0: of...
2: One moment.
0: We will wait for
2: courts
0: to pronounce their verdict.
4: Number two... Allow me to complete. For the second question is, should we deliberately go slow? Should we ask the investigative agencies to go slow so as not to give the impression, that we are being vengeful? We have no attendant burden to be nice to TMC. If they have committed sins, the law enforcing agencies will go after them, and will go after them at a pace that it deserves to go after them.
0: Well, including then not just prosecution, but ultimately taking that case through its logical conclusion for courts to be able to pronounce a verdict. And before I come to you, Charan Singh Sapra, I want to bring in, again, because I'm coming to that very important meeting, Shikha Mukherjee, June 8, 2026.